मातृवंदना सुनने के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं हनुमान प्रसाद तिवारी के स्वर में ये पहला भजन।

0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अगला भजन अशोक खोसला के स्वर में।
1: नाही।

0: अल्ताफ राजा और नुसरत वसीम के गाए नात के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: आइए आज कुछ चर्चा करते हैं अंडे के छिलके से बनाए जाने वाले खाद के संदर्भ में। हमारे देश में अंडे का सेवन बहुतायत में होता है। ये प्रोटीन का एक अच्छा एवं सस्ता स्रोत है। इसे उबालकर खाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अंडे के छिलके का वजन संपूर्ण अंडे के वजन का लगभग 11% होता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि करीब करीब 91% होता है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य पोषक तत्व जैसे पोटाश, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस एवं सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे क्लोराइड और जिंक भी पाए जाते हैं। अंडे के छिलके में उपस्थित झिल्ली में 69% प्रोटीन, 2.7% वसा, 1.5% नमी और लगभग 27% राख भी पाई जाती है। अंडे के छिलके से बनी खाद का प्रयोग अम्लीय मृदा को खेती योग्य बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट अम्लीय मृदा की अम्लता को कम करता है। इससे मृदा में पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। अंडे के छिलके में पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म एवं अति सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे यूरेनिक अम्ल, सियलिक अम्ल और अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। अंडे के छिलके से तैयार 1 चम्मच पाउडर में 750 से 800 मिलीग्राम तक कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। जहां तक अंडे से खाद तैयार करने की विधि का सवाल है, तो इसके लिए सर्वप्रथम अंडे के छिलकों को इकट्ठा करें। उसके बाद उनमें सैल्मोनेला वृद्धि को रोकने के लिए पानी से अच्छी तरह से धोएं। 3 से 5 दिनों तक धूप में सुखाएं। सुखाने से छिलकों के प्रसंस्करण में और भी मदद मिलती है। पर्याप्त सुखाने के बाद इनका पाउडर बनाएं। बड़ी मात्रा के लिए बिजली से चलने वाले ग्राइंडर की मदद से पाउडर बनाया जा सकता है। पीसते समय नाक और मुंह किसी मास्क या कपड़े से जरूर ढककर रखें। इस प्रकार से तैयार अंडे के छिलके के पाउडर का प्रयोग कंपोस्ट एवं गोबर की खाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। ये खाद सस्ती एवं पर्यावरण के अनुकूल होती है। टूटे हुए अंडे के छिलके को सीधे भी आप खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु छिलके का क्षरण थोड़ा धीमा होता है, इसलिए पोषक तत्वों को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। अंडे के छिलके से तरल खाद भी बनाई जा सकती है। जिस विधि से चाय बनाई जाती है, उसी विधि से अंडे के छिलके से तरल उर्वरक तैयार किया जा सकता है। अंडे के छिलकों को पानी के साथ उबाला जाता है। उबलने की प्रक्रिया अंडे के टुकड़ों को तोड़ने और पोषक तत्वों को पानी में छोड़ने में मदद करती है। इस तरह से तैयार तरल खाद का छिड़काव आप सीधे कर सकते हैं। इस तरह छिड़काव करने से पोषक तत्व पौधे

0: द्वारा सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस तरह से बने खाद को अधिक समय तक रखने से इनके जमने की आशंका रहती है, इसलिए जैसे ही ये तैयार होते हैं इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अंडे के छिलके से अधिक मात्रा में खाद तैयार करने के लिए आप छिलकों को आस पड़ोस एवं पास के होटलों वगैरह से भी संग्रहित कर सकते हैं। मुर्गी पालन करने वाले किसान या बड़े पोल्ट्री फार्म जहां अधिक मात्रा में चूज़ों का उत्पादन किया जाता है, वहां अंडे सेने की प्रक्रिया के बाद अंडे के छिलके फेंक दिए जाते हैं। ऐसे स्थानों से भी अंडे के छिलके एकत्रित किए जा सकते हैं। अंडे के छिलके में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। ये पौधों की वृद्धि और विकास को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे कि आपको पता ही है, कैल्शियम पौधों के विकास में सहायक होता है। इसकी उपस्थिति में पौधे अन्य पोषक तत्वों को अच्छी तरह से ग्रहण करने में समर्थ होते हैं और अधिक भोजन का निर्माण करते हैं। कैल्शियम कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक होता है। ये छोटे एवं बड़े आकार के कंदों की गुणवत्ता एवं उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक होता है। अंडे के छिलके के पाउडर को आप सीधे मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जैसा कि हमने आपको बताया, इसे पानी में घोलकर पर्णीय छिड़काव भी किया जा सकता है। इसका उपयोग किचन गार्डन के साथ खेत में भी हो सकता है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
3: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्षयान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण

0: महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली ICC वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi yesterday chaired the valedictory session of the 2-day National Departmental Summit on Water, organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. The Prime Minister appreciated the intensive 2-day deliberations and emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium Bart De Wever will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations as well as regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a 3-day visit to India. Prime Minister De Wever is accompanied by Belgian Minister of Defence Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will also deliver a keynote address at a Confederation of Indian Industry business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. More from our correspondent.
2: India and Belgium share historical ties spanning over 3 centuries. Belgium was among the first European countries to establish diplomatic relations with independent India in September 1947. Belgium is an important economic partner for India in Europe. Bilateral trade reached over $13 billion in 2025-26. Diamond trade, with Antwerp as a major global diamond hub, remains a significant component of bilateral commerce. Belgium is also an important source of investment in India. FDI inflows from Belgium amounted to approximately $4.2 billion between April 2000 and December 2025. Science, technology, and innovation cooperation is an important pillar of the partnership, and India and Belgium have developed cooperation in renewable energy, clean technologies, and sustainability. Defence cooperation is also emerging as an important new dimension of the partnership, reflecting the diversification of bilateral ties into strategic and security-related areas. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
1: Japan Credit Rating Agency, JCR, has upgraded India's long-term foreign currency and local currency issuer ratings by 1 notch from BBB+ to A-, while maintaining the stable outlook. JCR has also raised India's

एमवी कैंबल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात्रि 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी शनिवार 5 तारीख को सवेरे 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप और दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी।

एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर 2:30 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 12 बजे रंगत से लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी।

एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बूका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप और दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी शनिवार 5 को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं सुनीता आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सपना एक छोटा सा शब्द लेकिन अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे हुए। सपना वह है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जो हमारी आँखों में उम्मीद जगाता है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने का हौसला देता है।

दोस्तों, सपने वही होते हैं जो हमें हर दिन बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने का जुनून ही इंसान को खास बनाता है।

दोस्तों, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। जिस दिन सपनों के लिए मेहनत शुरू कर दी, उसी दिन सफलता की शुरुआत हो गई। सपनों को आंखों में सजा कर तो देख, हौसलों को अपना बना कर तो देख, मंजिल खुद कदमों में आ जाएगी, तो बस एक कदम बढ़ा कर तो देख।

0: तो दोस्तों अपने सपने को सिर्फ सोचे नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करे। अब मुझे दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ एक नए अंदाज में। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। इसे प्रस्तुत कर रही थी सुनीता। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 350वीं कड़ी।

देवाधिदेव महादेव उन महिमामय की प्रशस्ति कर रहे हैं जो हाथों में धनुष बाण धारण कर रघुकुल भूषण के रूप में प्रकट हुए हैं।

अभी आप रामचरितमानस गान की 350वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाटकर। संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देशभक्ति गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब सुनते हैं मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा अथवा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती है, जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7 सुनिए जन सूचनाएं। आनंद लीजिए देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का 7:15 पर, जबकि इसी समय FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में पर्यावरण चेतना आज की ज़रूरत विषय पर श्रीमती सफीना के साथ पूर्व प्रसारित वार्ता आप सुनेंगे और साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के तहत सुनिए ए हरिहरन और रेणु सिंह और विजय सिंह को सुबह 8:30 पर। सुबह 9 आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का।

9:30 पर शास्त्रीय संगीत में यू श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में मैंडोलिन वादन आप सुनेंगे। फिल्म गीतों का कार्यक्रम SMS माई चॉइस का समय रहेगा दिन के 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1363वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। दोपहर 12 बजे होगा तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 12:30। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में वत्सला मेहरा और अनुराधा पौडवाल को आप सुन पाएंगे। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 1:30 पर। दो बजकर 30 मिनट पर मौसम की जानकारी के साथ हमारी पहली सभा समाप्त होगी, लेकिन 100.9 MHz पर कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यू ही गाते रहो। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे प्राइमरी चैनल पर शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ।

0: 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की दूसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। बहारों की शाम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा 4:45 पर। शाम 5 बजे सुनिए तमिल कार्यक्रम। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। संध्या 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में पशुओं का सही आहार और सही पोषण, इस विषय पर श्रीमती कमला से की गई बातचीत आप सुनेंगे। 6:30 पर अपना अपना दर्द शीर्षक पर नाटक प्रसारित की जाएगी। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएँ दी जाएगी 7:15 पर। 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवानी कार्यक्रम में 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्रिका युवा संसार। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय होगा रात 8 बजे। 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार व गौरवगान। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट्स और रात 10 बजे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम आप सुनेंगे। इस बीच रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से रिले किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरीकरणेन उत्पद्यमानानि आह्वानानि प्रति नगरीय स्थानीय निकायेभ्यः संवेदनशीलतां वर्धयितुं आह्वानं कृतवान्। एतेषु आह्वानेषु वर्धमाना जनसंख्या अथ भविष्यस्य जलावश्यकताः च प्रमुखाः सन्ति। असौ नगरीय स्थानीय निकायेभ्यः एतादृशानां चिन्तन शिविराणाम् आयोजनस्य परामर्शम् अपि प्रदत्तवान्। श्रीमोदी ह्यः जलशक्ति मन्त्रालयेन आयोजितस्य द्विदिवसीयस्य राष्ट्रिय विभागीय जलशिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रस्य अध्यक्षतां कृतवान्। असौ जलसंरक्षण प्रौद्योगिकीनाम् अधिकाधिक प्रयोगाय आह्वानं कृतवान्। भारतीय निर्मातृभ्यः हितधारकेभ्यश्च कार्यकुशल समाधानानां विकासाय तेषां व्यापकस्तरे प्रयोगाय च समर्थनं प्रदातुं समर्पित प्रदर्शनानां कार्यशालानां च आयोजनस्य परामर्शम् अपि दत्तवान्। एतेषु वैश्विकस्तरे प्रचलितानां श्रेष्ठ कार्यपद्धतीनां परिचयः अपि भवेत् इत्यसौ उक्तवान्। प्रधानमन्त्री द्विदिवसीयस्य गहन विचार विमर्शस्य प्रशंसां कृत्वा अवदत् यत् शिखर सम्मेलने उद्भूताः क्रियान्वयन योग्याः समयबद्धाः च कार्यबिन्दवः निरन्तर समीक्षया तथा अनुभवाधारित अधिगम प्रक्रियया च अग्रे नेतव्याः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा बेल्जियम देशस्य प्रधानमन्त्री बाडी वेवर अद्य नवदिल्ल्यां द्वैपाक्षिक वार्तां करिष्यतः। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सम्बन्धानां समग्र परिदृश्यस्य परस्पर हित सम्बद्धानां क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणानां च विषये चर्चां करिष्यतः। बेल्जियम देशस्य प्रधानमन्त्री बाडी वेवर त्रिदिवसीय भारत यात्रायै ह्यः रात्रौ राष्ट्रिय राजधानीं प्राप्तवान्। तेन सह बेल्जियम देशस्य रक्षामन्त्री थियो फ्रैंकेन अपि भारतम् आगतवान्। गतवर्षस्य फरवरी मासस्य पदभार ग्रहणानन्तरम् एषा तस्य प्रथमा भारत यात्रा वर्तते। भारतागन्तुकः बेल्जियम देशस्य प्रधानमन्त्री भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त वाणिज्य सन्देहे सन्दर्भे भारतीयोद्योग महासंघेन आयोजितं व्यावसायिक कार्यक्रमं सम्बोधयिष्यति। भारतेन जलाप्लाव पीडिते नेपाल देशे स्वस्य आपदुद्धार कार्यक्रमः तीव्रीकृतः। नवदिल्लीतः आपत्कालीन सामग्रीणां पञ्चमः भागः अपि प्रेषितः। नेपालस्थेन भारतीय राजदूतेन सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तं यत् आपदुद्धार सहायतां वहत् भारतस्य पञ्चमं विमानं ह्यः हिमालयीय राष्ट्रं प्राप्तम्। विमाने विशिष्ट सुरंगोद्धारोपकरणैः सुसज्जितं 11 सदस्यात्मकं आपदुद्धार

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 89% तथा न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.2 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:09 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:28।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी। दिल्ली से श्री विजयपुरम आने वाला विमान उड़ान संख्या 2937 सुबह 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा उड़ान संख्या 2936 सुबह 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त विमान उड़ान संबंधी जानकारी।

0: श्रोताओं एक सूचना।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए

0: तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 के तहत पायलट सबमिशन विंडो को अब 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से कुक्कुट क्षेत्र में रोगों की रोकथाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और समग्र शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भाषा प्रयोगशाला पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सुबह के समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। उन्होंने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। दो दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना था। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विपो के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने कल दूसरे दिन नई दिल्ली में जल संरक्षण और सुरक्षा पर विभागीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए टिकाऊ जल प्रबंधन तथा जल सुरक्षा के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 ने नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने अपने जिलों की संस्कृति, विरासत, पर्यटन क्षमता, परंपराओं, व्यंजनों, कला और प्रेरणादायक स्थानीय कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया है। यह चैलेंज प्रसार भारती के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह पहल पायलट चरण के तहत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा और लद्दाख शामिल है। इसके तहत पायलट सबमिशन विंडो को अब 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इच्छुक प्रतिभागी वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के माई वेव्स सेक्शन पर अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने द्वीपों के उभरते रचनाकारों, युवाओं, छात्रों, पर्यटन प्रेमियों और नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में भाग लेने की अपील की है। भारतीय अंतरिक्ष

अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट के जरिए सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। श्री नारायणन ने कहा कि EOS-5 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान है और यह भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उन्होंने कहा कि यह अभियान भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत बनाएगा और इससे पृथ्वी अवलोकन सेवाओं में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपण की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है पशुपालन और भाषा प्रयोगशाला। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने मवेशियों के लिए प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए द्वीपों में आयोजित किए जा रहे बांझपन शिविरों की श्रृंखला के तहत हाल ही में राजीव नगर में शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान पशुओं के पेट के कीड़ों की दवा दी गई और पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंट प्रदान किया गया। विशेषज्ञों ने पशुपालकों को बेहतर प्रजनन स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए मवेशियों के वैज्ञानिक पोषण प्रबंधन की जानकारी दी। उधर पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने यूटी आत्मा के तहत वंडूर ग्राम पंचायत में कुक्कुट क्षेत्र में रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में टीकाकरण का महत्व पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर कैरी और कृषि विज्ञान केंद्र के विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों ने तकनीकी सत्र के दौरान किसानों को टीकाकरण, प्रमुख पोल्ट्री बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण, वैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रबंधन, जैव सुरक्षा, स्वच्छता और सामान्य झुंड प्रबंधन पर जानकारी दी। कार्यक्रम में किसान विशेषज्ञ संवाद सत्र भी आयोजित कर पोल्ट्री स्वास्थ्य और बीमारी की रोकथाम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान वंडूर ग्राम पंचायत प्रधान अधीर दास ने किसानों को वैज्ञानिक मुर्गी पालन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। समापन अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस समिति के अभियान समिति के अध्यक्ष TSG भास्कर ने द्वीप समूह के दौरे पर आए आवास और शहरी मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने द्वीप समूह के लिए हवाई किराए में अप्रत्याशित वृद्धि और उड़ानों की संख्या में की गई कटौती पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि किराए में वृद्धि होने से इलाज के लिए यात्रा करने वाले गरीब मरीजों, छात्रों, पर्यटकों, व्यवसायों और ई कॉमर्स क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। उन्होंने संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों से इस मुद्दे को नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष और संसद में उठाने का आग्रह किया। अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष रंगलाल हल्दर ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के निदेशक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंगत में खराब पड़ी रक्त जांच मशीनरी की तत्काल मरम्मत और रखरखाव के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया है। श्री हल्दर ने कहा कि रक्त जांच मशीनरी और संबंधित नैदानिक सुविधा काफी समय से बंद पड़ी है, जिससे मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग से यह भी अपील की कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंगत और द्वीप समूह के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में नैदानिक उपकरणों के नियमित रखरखाव और निगरानी की एक प्रणाली स्थापित की जाए, ताकि जनता को आवश्यक नैदानिक सेवाएं लगातार उपलब्ध होती रहे। समग्र शिक्षा के तहत खंड परियोजना कार्यालय डिगलीपुर की ओर से कल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भाषा प्रयोगशाला पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्राथमिक शिक्षकों, अभिभावकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, देखभाल करने वालों, सहायकों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को भाषा प्रयोगशाला के प्रभावी उपयोग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षणिक, डिजिटल, मनोरंजक, नेतृत्व, भाषाई व समग्र विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने की जानकारी दी गई। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा और स्टेनोग्राफर ग्रेड C तथा D परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर

सितंबर से 12 सितंबर तक किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के ई प्रवेश पत्र निर्धारित परीक्षा तिथि से पहले आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 के तहत पायलट सबमिशन विंडो को अब 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से कुक्कुट क्षेत्र में रोगों की रोकथाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और समग्र शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भाषा प्रयोगशाला पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन।

श्रोताओं, अपना देश केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों, संस्कारों और त्याग का प्रतीक होता है। जब देशभक्ति की भावना दिल में जगती है, तब हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा होता है।

श्रोताओं, भारत की यह पावन धरती सदियों से प्रेम, शांति और आशा का संदेश देती आई है। इसकी मिट्टी में वह अपनापन है जो हर दिल को रोशनी और विश्वास से भर देता है। आइए इसी उजाले और उम्मीद की भावना से सजा यह गीत सुनते हैं।

जिस देश की हवा में अपनापन हो, जिसकी मिट्टी में बलिदानों की खुशबू हो, वह देश हर नागरिक के प्राणों से भी प्यारा बन जाता है। अपने वतन के प्रति इस प्रेम और सम्मान को व्यक्त करता हुआ यह सुंदर गीत अब प्रस्तुत है।

श्रोताओं, देश को अच्छा बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपने विचारों से यही सच्ची देशभक्ति है और यही इस पंक्ति की असली संदेश। अब चाहेंगे कार्यक्रम से इजाज़त।

हम सबका कर्तव्य है अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपने विचारों से, यही सच्ची देशभक्ति है और यही इस पंक्ति की असली संदेश। अब चाहेंगे कार्यक्रम से इजाज़त।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। लीजिए पहले सुनिए पर्यावरण कार्यक्रम के तहत पर्यावरण चेतना आज की जरूरत विषय पर श्रीमती सफीना के साथ पूर्व प्रसारित वार्ता।
1: श्रोताओं, पर्यावरण शब्द पढ़ने, लिखने, सुनने या बोलने में जितना छोटा है, इसका अर्थ उतना ही ज्यादा बड़ा और गहरा है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि सभी चीजें पर्यावरण से ही जीवित हैं। पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। हम सभी पर्यावरण के साथ और पर्यावरण हमारे साथ हर तरह से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरण मानव जाति और दूसरे जीवों के लिए एक वरदान है। इन प्राकृतिक संसाधनों में हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, जीवाश्म ईंधन आदि आते हैं। यह जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन बढ़ती आबादी के बढ़ते लोभ के कारण इन संसाधनों का बहुत ही ज्यादा मात्रा में दुरुपयोग हुआ है। यह आर्थिक विकास मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर साबित हुआ है। हमारे पर्यावरण में लगभग सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जो अलग अलग तरीकों से हमारी सहायता करते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। यह हमें आगे बढ़ने और विकसित होने का बेहतर माध्यम प्रदान करते हैं। ये हमें वो सब कुछ उपलब्ध करवाते हैं जिसकी हमें जीवन यापन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारा पर्यावरण भी हमसे कुछ मदद की अपेक्षा रखता है, जिससे कि हमारा जीवन भी बना रहे और पर्यावरण भी कभी नष्ट ना हो। पर्यावरण का अस्तित्व हम पर नहीं, बल्कि हम पर्यावरण के अस्तित्व पर निर्भर हैं। आज जीवन के उपयोग में आने वाली लगभग सभी वस्तुएं प्रदूषण का शिकार हो रही हैं। क्या धरती, क्या अंबर, क्या जल, आज सभी अपनी पवित्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और धरती पर सबसे तेज दिमाग रखने वाला व्यक्ति अपने विकास के नाम पर अन्य प्राणियों के साथ साथ अपने वजूद को भी खतरे में डालता जा रहा है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि एवं आवरण के योग से बना है, जिसका अर्थ है वह वातावरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसमें वे सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण वह आवरण है जिसमें जीवन घिरा है। मानव जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है, अतः मानव ने प्रकृति को जानने के लिए अनेक कदम उठाए। उसने भूगर्भ को खोजा, समुद्र की गहराइयों को नापा और अंतरिक्ष पर भी पहुंच गया। यहीं से आरंभ हुआ मानव और प्रकृति के तालमेल के बिगड़ने का सिलसिला। मानव ने गुफाओं से निकलकर अपने जीवन को आरामदायक और सुखद बनाने के प्रयासों में प्रकृति से छेड़छाड़ आरंभ कर दी, जिससे

मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस धरती पर अगर हम जीवन को बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पर्यावरण को बचाकर रखना होगा और उसका संरक्षण करना होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न रक्षा उपाय हैं, जैसे प्रदूषण के खतरों को लोगों को बताना, पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 को कड़ाई से लागू करना, जनसंख्या को नियंत्रित करना, जंगलों की कटाई को रोकना, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का नियोजित प्रबंधन करना और वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना जिससे कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संकट ना उत्पन्न हो। मनुष्य की फितरत रही है कि वह हर अपनी गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। इन बातों को सुधारने के लिए हमें इस पलायनवादी नियति से आगे सोचना चाहिए। जो गलतियां हमने की है उसे सुधारने की आवश्यकता है, उन गलतियों से मुकरने की नहीं, उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। उन गलतियों को ना दोहराया जाए, यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य इस समय जिन भौतिक सुख सुविधाओं और संपदाओं का उपयोग कर रहा है, वे सभी विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान के वरदान हैं। लेकिन यदि विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग नहीं किया गया, तो इस वरदान को अभिशाप बनते देर नहीं लगेगी। और इस भय से औद्योगिकरण एवं विकास योजनाओं को बंद भी नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सभी को एक मध्यम मार्ग अपनाने की जरूरत है। इस मध्यम मार्ग का अर्थ है संपोषित अथवा निर्वहनीय विकास की नीति को अपनाना। मनुष्य में निर्वहनीय विकास एवं उसकी जीवन शैली को अपनाने की समझ पर्यावरणीय अध्ययन के प्रति जन चेतना को प्रबुद्ध करने से ही उत्पन्न हो सकती है। पर्यावरण के प्रति जन चेतना की आवश्यकता पर्यावरण के प्रति लापरवाहियों के दुष्परिणाम से परिचित होने की दृष्टि से भी जरूरी है, और ये तभी संभव है जब हम खुद के स्तर पर जागरूक होंगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और देश के स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रम हमारी भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकते। अतः हमें शुरुआत अपने परिवार, अपने मोहल्ले और अपने गांव से करनी होगी, तभी पुनः प्रकृति के अनमोल धरोहरों को सहेजने में सफल हो पाएंगे। आज हालात यह है कि वातावरण में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें विचरण कर रही हैं कि जब बरसात होती है तो उसके साथ गैस के ये कण मिलकर धरती पर तेजाब बनकर बरसते हैं, और आज यह आम बात होती जा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 5 तत्व हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, वह सभी आज प्रदूषित हो चुके हैं। बढ़ती जनसंख्या के आर्थिक विकास से पर्यावरण पर दबाव पड़ता है, और यह बात सभी जानते हैं कि मानव की आवश्यकताएं पर्यावरण से ही पूरी हो सकती है। किंतु इन आवश्यकताओं को पूरा करते समय यह समझ बनाए रखनी होगी कि हम पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं तथा हमारा विकास उसके साथ ही संभव है। और पर्यावरण को असंतुलित और दूषित कर हम न केवल स्वयं का जीवन संकट में डाल रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के साथ भी घोर अन्याय कर रहे हैं। श्रोताओं, पर्यावरणीय अध्ययन के प्रति जन चेतना की आवश्यकता इसलिए भी जरूरी है ताकि इस संसार का कोई भी नागरिक पर्यावरण संबंधी किसी भी तरह के प्रश्नों और मुद्दों से अनजान न रह जाए। व्यक्ति में पर्यावरणीय समस्याओं की समझ तभी जागृत हो सकती है जब उसे पर्यावरण की समुचित शिक्षा दी जाए। इसलिए जरूरत है कि हम अपने क्रियाकलापों और आर्थिक गतिविधियों को पर्यावरण के प्रति सकारात्मक बनाएं और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करें। किसी विद्वान ने सही कहा है, पर्यावरण को यथावत छोड़ दिया जाए तो वह निरंतर लाखों सालों तक जीवन का सहारा बन सकता है। इसलिए श्रोताओं, हमें चाहिए कि हम पर्यावरणीय चेतना को जगाएं

श्रोताओं, अभी आप पर्यावरण चेतना आज की ज़रूरत विषय पर श्रीमती शफीना के साथ पूर्व प्रसारित वार्ता सुन रहे थे। श्रोताओं, आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। आइए आपको सुनवाते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म का गीत, जिसे लिखा है सोमिया ने, स्वर बनाई है संदीप छोटा ने और गायक कलाकार है सोमिया।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में हम फिर लौटेंगे इस अंतराल के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। श्रोताओं, अगला गीत जो आप सुनेंगे उसे आवाज़ें दी हैं विनोद राठौड़ और जॉली मुखर्जी ने। फिल्म का नाम है राजा बाबू। गाने के बोल लिखे हैं समीर ने तथा संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म क्यों हो गया ना से। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को आवाज़ें दी हैं साधना सरगम और उदित नारायण ने।

युवा का गीत। इस गीत को लिखा है महबूब ने, संगीत से सजाया है एआर रहमान ने और आवाज़ें दी हैं एआर रहमान और सुनीता सारथी ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8:30 हुए हैं, माफ़ कीजिए, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है।

0: है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
6: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाई रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
7: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगवी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल सीबीआई को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरण

0: के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली ICC विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। ICC ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितम्बर तक ह्यूंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
3: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बाल्यापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
5: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज के ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी, गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में SIR के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने

0: लुप्तप्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़िया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा 6ठी और 9वीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर ग्रेटर एडॉप्शन ऑफ वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। Prime Minister Modi to hold talks with his Belgian counterpart Bart de Wever in New Delhi today. ISRO to launch Earth Observation Satellite EOS-5 from Sriharikota tomorrow. India's sovereign credit rating upgraded to A- with stable outlook by Japan Credit Rating Agency. Bombay High Court orders CBI probe into death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. And in women's cricket, India to take on Hong Kong in the second Group A match of 2020 Asia Cup in Dubai this evening. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water organized by the Minister of Jal Shakti yesterday. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. We have more from a correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Appreciating the intensive two-day deliberations, Mr. Modi suggested that the summit should not remain a one-time exercise and call for a continuous process of review and follow-up. Emphasizing Jan Bhagidari, Mr. Modi suggested promoting Jal Utsav to create greater awareness among people. Prime Minister called for making desilting a regular program and developing clear criteria and SOPs for desilting. On dam safety, Mr. Modi stress rigorous preparedness before every monsoon, adherence to prescribed precautions, and creating awareness among school students, including through suitable incorporation in educational curricula. Prime Minister further called for strengthening knowledge and capacity on water management and governance in universities and higher educational institutions. He suggested structured interstate study visits involving public representatives, officials, and farmers to facilitate practical learning and replication of successful interventions. Mr. Modi also called for robust water data governance, with water sector data brought together, systematically managed, analyzed and effectively utilized. He recommended the use of AI for data collection and analysis through a uniform format. He also stressed anticipatory and integrated planning to address water scarcity through suitable utilization of treated water for agriculture and industrial purposes. With Subarna Saikia, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium, Bart de Wever, will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations, as well as regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a three-day visit to India. Prime Minister de Wever has been accompanied by Belgian Minister of Defence, Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February.

0: का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9 बजे हैं।
1: 1 2 3 चेक चेक हेलो चेक। अरे चेक किया क्या तूने? चेक किया क्या?

0: कराने का ना रे।
1: चेक चेक, हेलो चेक।
0: अरे अपना HIV स्टेटस चेक किया क्या?
2: नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अब प्रस्तुत है आपके भरपूर मनोरंजन के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से। किशोर कुमार की आवाज़ में गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

किशन कन्या से लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज़ों में, गीत रचना इंदिवर की और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अगला गाना जो आप सुनेंगे, इसको आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है कटी पतंग। गाने के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने।

आनंद बख्शी का लिखा हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतबद्ध। श्रोताओं सुनिए कर्ज फिल्म का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और साथियों ने।

0: श्रोताओं, एक सूचना।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

0: द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं दो रास्ते फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, सवेरे 10 बजे आप आनंद ले पाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम SMS माई चॉइस का। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यू श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में मैंडोलिन वादन, इनके साथ वायलिन पर सिक्किल आर भास्करन, मृदंगम पर पालघाट रघु, कंजीरा पर वी नागराजन ने संगीति की है। तो लीजिए, यू श्रीनिवास का मैंडोलिन पर बजाया पहले सुनिए राग धर्मावती, जो रूपक ताल में निबद्ध है व कृति दीक्षितर की है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, इस समय आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में यू श्रीनिवास का मैंडोलिन वादन सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं राग नटा, जो आदिताल में निबद्ध है वकृति मयूरम विश्वनाथन की है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS माई चॉइस।

उठाना चाहते हैं तो जल्दी से अपना नाम, पता, फिल्म का नाम व गाने के बोल लिखकर हमें मैसेज भेजिए इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000, 9474234000। तो चलिए फिर करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और आपको सुनवाते हैं पहला गीत, जिसे हमने लिया है दुलारा फिल्म से। इस गीत को सुनने के लिए हमें मैसेज आया है झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश, संगीता लिपि और दीपाली का।

अगली फरमाइश आई है उदयपुर राजस्थान से, सुशील यादव, रेणु यादव, मोहित, कार्तिक, नमिता, शानू और संजू का। हमारे ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं बरसात की रात फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अगला गीत फूल और कांटे फिल्म से। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है शादीपुर श्री विजयपुरम से आबिदा अफजल और अरशद ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने मैंने दिल तुझको दिया फिल्म का ये गीत सुना। इस गीत को सुनने के शौकीन थे बाराटांग से प्रिया, रमेश और अमित। अब कार्यक्रम में समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

ब्रेक के बाद एसएमएस माय चॉइस कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक, हमारे इन दोस्तों ने फरमाइश की है मोम की गुड़िया फिल्म का ये गीत।

हमारे अगले फरमाइश करता है भातु बस्ती श्री विजयपुरम से पुष्पा, सोनी और नितिन। हमारे ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं दिल तो पागल है फिल्म का ये नगमा।

आप सुनिए दिल तुझको दिया फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है हमारे ये दोस्त बम्बू फ्लैट से अब्दुल, सोनिया और महेश।

श्रोताओं, अभी आपने गीत फिल्म का ये गीत सुना, जिसे सुनने के लिए हमें मैसेज भेजा था जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर लाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, दुर्गेश्वरी राखी और तृप्ति का।

0: आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: श्रोताओं, इस समय आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS माई चॉइस सुन रहे हैं।

श्रोताओं, और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत कुछ कुछ होता है फिल्म से। इस गीत की फरमाइश की है हेडो श्री विजयपुरम से प्रिया अजीज, विजय आनंद और रिया ने।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1364वीं कड़ी।

0: बदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला।

0: जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
1: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
0: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
0: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
1: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
0: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही, इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
1: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
1: श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
1: जी
0: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
1: श्रोताओं, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
0: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
1: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
0: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
1: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
0: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
1: श्रोताओं, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
0: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
1: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
0: और फिर ट्रेन आती है।
1: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
0: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
1: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
0: विमलेश जी, जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
1: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
1: जी,
0: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओं, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
1: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यूशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
0: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
1: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
0: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
1: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
0: और यदि हम उसके रास्ते

0: से की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
1: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं, उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
1: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
0: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
0: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
5: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेस से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
6: जी मैं रमेश, पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा।

रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
5: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
6: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
5: ना जाने क्या होगा इसका।
6: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
5: अरे वो सब तो ठीक है, पर
6: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
4: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।

0: सैम, है ना? अरे इधर तू आओ। हाँ हाँ आते हैं।
1: सैम, है ना? क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तो तैयार हैं मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
1: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
0: कैसा प्रयोग?
1: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
2: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
1: संभव तो है भाई, संभव है।
0: अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ।
1: इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
2: अच्छा
1: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुंच जाओ।
3: अच्छा।
1: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है।
2: ठीक है।
1: उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है।
0: घंटी?
1: सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
1: फिर जाओ ना।
0: पहुंच गए? हाँ हाँ।
1: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
0: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
2: अरे वाह, अरे वाह, क्या
0: बात है! अरे वाह, मार्कोनी, क्या क्या बात है!
2: अरे ये तो जादू की तरह लगता है।
3: वाह, क्या बात है!
2: अरे वाह,
1: सिग्नल मिला?
2: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
4: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
5: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
4: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार, यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता।

0: क्रिसमस भी तो है ना।
1: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
0: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा, ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
1: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
0: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
1: देखता हूं।
0: सुन सुन, ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
1: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: अरे रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है, वाह!
0: रॉबर्ट, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि यह जहाज डूब नहीं सकता,
0: अरे ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: ये क्या हो रहा है? यार पूरी तरह हिल रहा है।
6: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
7: हेड पर कितनी बड़ी दरार पड़ गई है। अरे बचाओ, अरे तो पानी भर।
0: जहाज की स्पीड कम करो। ऑपरेट द बैक प्रोपेलर। जहाज को पीछे करो। एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हरे।
6: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो। Save Titanic, ship location 40 degree north and 25 degree south. I repeat, 40 degree north and 25 degree south. Or head, light signal भेजो. Send general call distress.
6: जल्दी, जल्दी करो.
0: जीवन रक्षक नावों के नीचे उतारो. Life boat, उतारो. Life boat के नीचे उतारो.
8: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
3: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
4: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
3: जो मार्कोनी

0: ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो
6: विश्वास नहीं होता।
3: मिस्टर मार्कोनी
7: जी,
3: अच्छा ये बताइए,
7: यह आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बताइए
8: बताइए। जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
3: गुड गुड।
8: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
3: बिल्कुल।
8: धन्यवाद।

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1364वीं कड़ी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने बेनज़ीर फिल्म से लिया था, जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत से सजाया था एस डी बर्मन ने व स्वर दिया था लता मंगेशकर ने। अब आपको सुनवाते हैं आप बीती फिल्म का गीत, किशोर कुमार और अमित कुमार की आवाज़ों में, बोल आनंद बख्शी के हैं व धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ डैडी, ओ साईं,

0: का प्यार।
1: कैफी आजमी का लिखा एवं खयाम का संगीतबद्ध किया हुआ, आइए सुनते हैं आखिरी खत, फिल्म का गाना। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में गाने और भी हैं, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: ब्रेक के बाद भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं तलाश फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार मजरूह व संगीतकार हैं एस डी परमन।

Hi, handsome. यहाँ बैठ सकती हूँ? माफ कीजिएगा।

0: हाय प्रिंस, अकेले हो? शादी नहीं की? प्यार भी नहीं?
1: इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में भरोसा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है राजेंद्र किशन ने व संगीत से सजाया है रवि ने।

मन्ना डे, आशा भोसले, बातेश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज़ों में आइए सुनते हैं बरसात की रात फिल्म का गाना। बोल साहिर के हैं वह धुन तैयार की है रोशन ने।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണിയുടെ ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थ्रियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही।
1: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात

0: बात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं। ये संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा प्रतिबद्धताओं पर आधारित हैं।
1: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। श्री रूबियो ने यह बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,588 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर रहा। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। महिला एशिया कप 2023 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में रविवार को भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वसलाम मेहरा की आवाज़ में चंद गज़लें सुनने के बाद अब पेश खिदमत है अनुराधा पौडवाल और चंदन दास की आवाज़ों में कतिल शिफाई का लिखा कलाम।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे फनकार थे वत्सला मेहरा, अनुराधा पौडवाल और चंदन दास। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप भी गानों के शौकीन हैं और सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गीत, तो अपना नाम, पता, फिल्म का नाम व गाने के बोल लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000, 9474234000। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, सपने साजन के फिल्म से। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है पलेरा टीकमगढ़ एमपी से बजेंद्र, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: श्रोताओं, इस समय आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का

कार्यक्रम व्हाट्सएप माय चॉइस सुन रहे हैं। अगला गीत राज फिल्म से। इस गीत को सुनने के शौकीन हैं हमारी ये दोस्त नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला विशाल, नारायण सोपान और आशीष।

हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं ज़िला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार और नरगिस। हमारे ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं साजन फिल्म का ये गाना।

अब आपको सुनवाते हैं हमराज फिल्म का गाना। इस गीत की फरमाइश की है नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर खुशल, नीति शाह, सुरभि अश्विन, मंगला और राजेंद्र ने।

श्रोताओं, और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं कबीर सिंह फिल्म का गीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं जिला श्रीभूमि असम से हितेंद्र दास।

आकाशवाणी का यशरी विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: evening, while the Karkai River near Adityapur Bridge was flowing at 129.76 meters. Although the water levels of both rivers have fallen compared to Tuesday, the Karkai River is still 76 centimeters above the danger mark. One gate each of Odisha's Byangbil and Karkai dams, 15 gates of Ganjia Barrage, 13 gates of Chandal Dam, and 9 sluice gates of Galodi Barrage remain open. The administration is maintaining continuous vigil in areas along the rivers and in low-lying areas. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
1: Prime Minister Narendra Modi today took stock of the situation of flood in his constituency, Varanasi. He spoke with District Magistrate Satendra Kumar via telephone to obtain detailed information. He inquired about the arrangements being made in relief camps. The Prime Minister directed that flood relief operations be continuously monitored and that immediate relief be provided to those affected. Chief Minister Yogi Adityanath also conducted aerial survey of the flood-affected areas of Farukhabad district. The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over East Madhya Pradesh tomorrow. The Met Department predicted heavy rainfall with thunderstorms and lightning over Bihar, East Rajasthan, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Uttarakhand and Madhya Pradesh tomorrow. In badminton, Kidambi Srikanth stunned world number 9 Victor Lai of Canada in straight games to enter the men's singles quarterfinals of the China Masters Super 750 badminton tournament in Shenzhen today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Belgium agree to double bilateral trade in next 5 years. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Belgian counterpart in New Delhi. Agreements signed in areas of renewable energy, cyber crime and diplomatic training. Defence Minister Rajnath Singh and his Belgian counterpart commit to expanding bilateral defence ties through dialogue, high-level visits and capacity building. Finance Minister Nirmala Sitharaman meets investors at high-level business roundtable in New York, highlights government's focus on artificial intelligence, data centres and global capability centres. In Bihar, water level in Ganga River rises, increasing flood threat in new areas. And in badminton, Kidambi Srikanth beat Victor Lai of Canada to enter men's singles quarterfinals of China Masters in Shenzhen. With that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की. दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रोंकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की. उन्होंने एआई डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया. बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे. अब समाचार विस्तार से. भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की. दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है.
3: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है. इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है. पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है. आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है.
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं. उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है.

0: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ MOU हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के IMEC इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
1: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
3: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैस्डैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता FTA आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित

0: राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक अज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
5: रांची में गेतलसूर डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति

जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये विविध धड़कन लीजिए।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम, मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोता, इस समय 2:32 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन

0: FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

दोस्तों नॉन स्टॉप म्यूजिक के सफर में आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शबाना। आपको बता दें गीतों से भरा ये सुहाना सा सफर जारी रहेगा अब से लेकर 3:30 तक, लेकिन बीच में छोटा सा ब्रेक लिया जाएगा और उसके तुरंत बाद ही ये सफर फिर से यूं ही चल पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की है, चलिए निकल पड़ते हैं शबाना के साथ नॉन स्टॉप म्यूजिक के इस सफर में।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: दोस्तों अभी आप लव आजकल मलंग शुभ मंगल ज्यादा सावधान दे दे प्यार दे बागी वॉर बैंग बैंग वॉय चीट इंडिया मर जावा बाटला हाउस पागलपंती और ड्रीम गर्ल इन सभी फिल्मों के गीतों का आनंद ले रहे थे। अब इसके साथ ही नॉन स्टॉप म्यूजिक का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोपहर के 3:30 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम, यूं ही गाते रहो।

ही गाते रहो कार्यक्रम के इस सफर में आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शबाना। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ रिश्ते वादों से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। दूरी कितनी भी हो, अपनापन कभी कम नहीं होता। सच्चे रिश्तों में भरोसा सबसे खूबसूरत चीज होता है। वक्त बदल जाए मगर साथ निभाने का वादा नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि रिश्ते वही खूबसूरत है जिनमें उम्र भर साथ का एहसास रहे।

दोस्तों, प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं है, बल्कि किसी को दिल से चाहना ही सबसे खूबसूरत एहसास होता है। उसकी खुशी में खुश होना और उसकी कमी महसूस करना ही प्यार है। फासले दिलों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत दूरी नहीं, दिल देखती है।

दोस्तों सच्चा प्यार वो है जिसमें किसी की खुशी अपनी खुशी बन जाए, उसकी एक मुस्कान आपके पूरे दिन को खूबसूरत बना दे, उसकी मौजूदगी में वक्त का पता ही ना चले और दूर होकर भी दिल उसी के पास रहे, क्योंकि प्यार में इंसान खुद से ज़्यादा किसी और का हो जाता है।

Hik in hangine te din ke ke tige nye kuhat rok.

0: tikuknya Julina Jeremiah anthai ngam manangi tinke ke hoyeng atil nga ang ne sin danga mu hek inure changro ngi taka saat idelu hang anai minit na kauksin ganro ta sakam ngai yen
1: श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 4:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की दूसरी कड़ी।

हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। हर रोज की तरह, हर दिन की तरह, आज भी मैं आ गया आपके लिए कुछ नया लेकर। हम हर रोज एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और ये टॉपिक हमारे फिटनेस, लाइफस्टाइल, हेल्थ, जैसे कि मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ, इससे जुड़ी होती है। ये टॉपिक्स को हम एक्सपर्ट्स से लेते हैं, उनकी राय लेते हैं। हमारा टीम बैठकर इसके बारे में डिस्कस करता है। बाद में सोच विचार के बाद, एक्सपर्ट्स के राय के बाद, एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए तैयार की जाती है और उसके बाद पेश किया जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आप केयरफुली हमारी बातों को सुनिए, ये बेहद ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स एज केयर गिवर्स। आमतौर पर दादा दादी और नाना नानी के पुराने किस्से सुनना आपने कई बार देखा होगा। अपने आप में काफी मजेदार अनुभव होता है ये। हालांकि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन क्या आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के फायदे जानते हैं? क्या उससे वाकिफ है क्या आप? बता दें कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज के दौर में खेल, पढ़ाई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में व्यस्त रहने के कारण बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। वही कुछ बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना जुलना ही बड़ी मुश्किल से होता है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मददगार हो सकता है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के कुछ फायदे आज के लम्हे प्रोग्राम में आपका आरजे चेतन से। आजकल के ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल में सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहने वाले बच्चे अमूमन अन्य लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वही ग्रैंड पेरेंट्स के होने से बच्चे न सिर्फ उनके साथ समय बिताते हैं बल्कि उनकी बात भी मानते हैं। साथ ही छुट्टियों में ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने से बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी घुलते मिलते हैं और सोशल लाइफ को खुलकर एंजॉय कर पाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चे बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर बच्चों की नादानियों को माफ करके उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, जिससे बच्चों की सहनशीलता में इजाफा होता है। साथ ही ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान की भावना से देखते हैं और उनकी सलाह को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। नाना नानी, दादा दादी के साथ या जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, उनको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। ऐसे में बच्चे हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करता है। साथ ही मुश्किलों से डरने से बजाय उनका डट कर सामना करने की यकीन रखता है। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चों में समर्पण और सहयोग की भावना भी पैदा होती है। छोटे बच्चों के लिए दादा दादी बेहद जरूरी होते हैं। जो बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी के पास रहते हैं वह अन्य बच्चों से ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं। दादा दादी अपने बच्चों को हर तरह से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। केवल ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को पुरानी संस्कृति, मान्यता, परंपरा से जोड़ सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों में अच्छी आदतों के लिए हर

संभव प्रयास करते हैं। बच्चे उन्हीं के द्वारा ही नैतिक गुणों को जानते हैं और ये भी समझते हैं कि नैतिक गुणों की जिंदगी में कितनी अहमियत होती है। इसके अलावा भी ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए जानते हैं कौन सी है वो कारण जिनकी वजह से बच्चों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स जरूरी होती है। सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। जब बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं वे अपने पूरे परिवार यह तक के दादा दादी

लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। जब बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वे अपने पूरे परिवार यह तक के दादा दादी के रिश्तेदारों को भी जान जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को पुराने संस्कृति मान्यता ये सब तो सिखाई देते हैं। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उनके बच्चों में नैतिक गुण जरूर हो। यह नैतिक गुण ही जीवन को जीने का तरीका बदल सकता है। इसीलिए नैतिक शिक्षा के लिए ग्रैंड पेरेंट्स एक अच्छा विकल्प है। अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर उनके अंदर नैतिक गुण लाने में बेहद सहायक है। हर बच्चा बड़े बुजुर्गों से कुछ न कुछ जरूर सीखता है। ये पाया गया है कि बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना बेहद पसंद होता है। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें कभी प्यार की कमी महसूस ही नहीं होती है और वह हमेशा खुश रहते हैं। उन्हीं से बच्चों की सुरक्षा की भावना भी एहसास होता है। उनके द्वारा दिया गया प्यार ही उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब भावनात्मक या व्यवहार संबंधी परेशानियां उनके सामने खड़ी हो जाती है, तो इस स्थिति में वह बेहतर तरीके से समस्या से निपटते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर अपने दादा दादी के और नाना नानी के प्रति स्नेह और आदर की भावना ज्यादा होती है, जिससे वह भावनात्मक रूप से स्थिर होने लगते हैं और दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वे अकेलापन, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से कम पीड़ित होते हैं। दादा दादी या नाना नानी हमारे बच्चों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बच्चों के पेरेंट्स उनकी कोई जिद पूरी नहीं करते हैं, ऐसे में ग्रैंड पेरेंट्स उनकी इच्छा पूरी कर उनको खुशी देते हैं। लेकिन कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स के अधिक प्यार की वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स को अनसुना करने लगते हैं, उनका कहना नहीं मानते, जिससे दो पीढ़ियों के बीच गलत फैमिली बनने लगती है। इसीलिए ग्रैंड पेरेंट्स को चाहिए कि वो ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अपने प्यार को बैलेंस रखे और बच्चों के साथ ये बात करने से बचे। पेरेंट्स कुछ कारणों से अपने बच्चों को कुछ चीज़ों को खाने से मना करते हैं, जबकि वही दूसरी तरफ ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों की बात को इग्नोर करते हुए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जिद पूरी करते हैं। ऐसा करना जहां उनके नाती पोतों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, वही ऐसा सपोर्ट उनको जिद्दी भी बना सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों में कुछ सुधार की कोशिश में उनको पनिश करने के वजह से उनकी विश पूरी नहीं करते। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों को उनकी पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स लाने तक उनको कोई नए टॉयस और गेम नहीं दिलाते, जबकि इसके विपरीत ग्रेड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की विश पूरी कर देते हैं, जिससे बच्चों में बिना प्रयास के चीजों को पाने की आदत बन जाती है। इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चों और बच्चों के साथ अपने रिश्ते को भरपूर जी सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। विद दिस वी कंक्लूड आवर प्रोग्राम फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ लर्न है। अंटिल देन, हैव अ ग्रेट टाइम। बाय फ्रॉम योर आरजे चेतन। Call or messages on 0951522703 9, that's 0951522703 9, or write to us at feedbackamc1@gmail.com, that's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lamhe.vanilla, that's spice.lamhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ ही पलों बाद यानी 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:00। 5:30 पर हम प्रसारित करेंगे बांग्ला कार्यक्रम। किसान वाणी कार्यक्रम में शाम 6:00 बिमली टान की निवासी श्रीमती कमला से बातचीत होगी, पशुओं का सही आहार और सही पोषण। 6:30 पर श्री हमीदुल्ला का लिखा नाटक आप सुनेंगे अपना अपना दर्द। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। संध्या 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया कल लुत्फ उठाइए 7:20 पर। 7:30 पर युवानी कार्यक्रम के तहत पत्रिका कार्यक्रम होगा युवा संसार। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8:00। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा गौरव कान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट और रात्रि 10:00 क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, तथा रात्रि 11:00 मौसम की जानकारी के साथ ही हमारी सभा की समाप्ति होगी। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। और अब कल के कार्यक्रमों पर एक नज़र। कल हमारी स्थानीय सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे प्रभाती वंदना। एग्रीटिप्स का समय रहेगा 5:55 जिसमें जानकारी का विषय रहेगा डेयरी प्रबंधन में नवजात बछड़ों की देखभाल। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 6:10 पर। 6:15 पर होगा कार्यक्रम इंद्रधनुष जो केंद्रित होगा मुस्कान शीर्षक पर। रामचरितमानस गान का समय रहेगा 6:30। 6:40 पर सुनिए कार्यक्रम गांधी चर्चा। मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। कार्यक्रम देश रागनी का समय रहेगा 7:15। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर विभिन्न कलाकारों को आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों कार्यक्रम तराने सुहाने का आनंद लीजिए 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप पंडित जितेंद्र अभिषेक का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुन पाएंगे। 10:00 सुनिए कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। दिन में 11:00 हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। निकोबारी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 11:30। 12:00 सुनिए तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। कवालियों का आनंद लीजिए महफिले कवाली कार्यक्रम में 1:10 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ ही प्राथमिक चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे जिसमें आप लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यू ही गाते रहो। हमारी दूसरी स्थानीय सभा की शुरुआत होगी शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम के साथ। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। शाम 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में कुमारी राखी से बातचीत होगी, श्री कृष्ण के जीवन संदेश और उसकी महत्वता। समाचार तरंगिणी का समय रहेगा 6:30। 6:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की तीसरी कड़ी। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:55 पर। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। संध्या 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्मी गीतों कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया कल लुत्फ उठाइए 7:20 पर। 7:30 पर युवानी कार्यक्रम के तहत फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो फ्रेंड्स, साथ ही दादाजी नौरोजी के जन्मतिथि पर चर्चा आप सुन पाएंगे। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8:00। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा गौरव कान। रात्रि 10:00

व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:30 पर करंट अफेयर्स कार्यक्रम होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोता अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:45 हुए हैं। आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं हम साथ साथ है फिल्म से। आवाजें हैं कविता कृष्णामूर्ति, उदित नारायण और कुमार सानू की। बोल आर किरण के हैं।

श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों को समर्पित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: नमस्कार, किसान वाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। किसान साथियों, हमेशा की तरह कार्यक्रम का शुभारंभ हम आज के खूबसूरत विचार से कर रहे हैं। हमारा आज का विचार है, क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देना बंद नहीं करते। साथियों, अच्छा समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है। साथियों, हम समझते हैं हमारे इन विचारों से हमारे किसान साथी सहमत होंगे, क्योंकि मेहनत लगन ही होती है जो कि जीवन में अच्छे समय को लेकर आती है। आइए इसी विचार को लिए आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। भाइयों, हमारा आज का प्रश्न है, पशु आहार में अजोला के प्रयोग से किस घटक की प्राप्ति ज्यादा होती है ये आपको बताना है। भाइयों, तीन विकल्प, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। किसान भाइयों, प्रश्न एक बार फिर सुने, पशु आहार में अजोला के प्रयोग से किस घटक की प्राप्ति ज्यादा होती है ये आपको बताना है। तीन विकल्प, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। भाइयों, प्रश्न के उत्तर सोचते रहें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे। किसान साथियों, अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर। भाइयों, फसल की अच्छी वृद्धि और बम्पर पैदावार के लिए पोषक तत्व प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पौधों को अपनी संपूर्ण वृद्धि के लिए कुल 17 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। वृहित पोषक तत्व, इनकी पौधों को अधिक मात्रा की जरूरत होती है। मुख्य है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम तथा सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व, भाइयों इनकी बहुत कम मात्रा चाहिए होती है, लेकिन इनकी कमी से भी पैदावार घट जाती है, जैसे जिंक, आयरन, बोरोन और मैग्नीज। पोषक तत्व प्रबंधन के प्रमुख जो उपाय होते हैं उस बारे में भी हम चर्चा कर लें। मृदा परीक्षण, खाद या उर्वरक डालने से पहले मिट्टी की जांच करवाएं साथियों, ताकि आपको ये पता चले कि खेत में किस तत्व की कमी है। जैविक खाद का प्रयोग मिट्टी की उर्वरता और उसकी संरचना सुधारने के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। संतुलित उर्वरक उपयोग, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल तय मात्रा और सही समय पर करें। फसल चक्र, हर सीजन में एक ही फसल उगाने के बजाय दलहनी फसलें शामिल करें जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। साथियों, ये तो रही कुछ बातें फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व विषय पर। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हमारे अधिकतर किसान साथी खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, और कई एक ग्रामीण महिलाएं जो घर पर रहती हैं वो अपने घर के पिछवाड़े ही मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि करती हैं। किसान साथियों, पशुओं के पालन पोषण के लिए बहुत सारी जगह की आवश्यकता नहीं होती। छोटी सी जगह पर भी हम शेड इत्यादि बना करके बकरी पालन या फिर गाय पालन कर सकते हैं। आइए हम ऐसी ही एक महिला श्रीमती कमला, जो बिमलीटान की रहने वाली है और अपने घर पर ही बकरी पालन करती हैं, आइए सुनते हैं इनके साथ की गई ये बातचीत पशुओं का सही आहार और सही पोषण विषय पर। कमला जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार मैम।
0: कमला जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं बकरी पालती हूँ, साइड में छोटा मोटा मुर्गियाँ भी है मेरे पास, वो भी थोड़ा देख रेख कर लेती हूँ मैं उन बकरियों के साथ साथ। मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं सिलाई करती हूँ।
0: यानी कि पशुओं के उसमें जा करके आप बकरी पालन के बारे में भी सोच रखी है। तो हम यही जानना चाहेंगे कि कुल कितनी बकरियाँ जो पालन पोषण आप करती है उसको चारे में आप क्या क्या खिलाती हैं?
1: मैं तो ज्यादातर घर का ही चीज देती हूँ मैम, बाहर का थोड़ा कम ही मंगाती हूँ। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं उसका गंजी रहता है, वो अलग से रख देते हैं उनके लिए। जब वो चर के आते तो उसमें गेहूं का आटा या मक्का का आटा जो है वो मिला के उनको देती हूँ,
0: अच्छा।
1: या बाजार से उनके लोग कभी कभी जो दाना मिलता है वो भी कभी कभार लेके खिला देती है।
0: तो बकरियों को आप क्या छोड़ देती है खुला,
1: जी,
0: मतलब
1: मेरे
0: चरने के
1: बगीचे
0: लिए?
1: को वहाँ पे, जी, खुला
0: अच्छा,
1: अपना
0: आपका
1: चर के
0: बगीचा
1: आते हैं।
0: है।
1: जी
0: तो जब दाना इत्यादि आप देती हैं तो वो आराम से खा लेते हैं।
1: जी जी
0: अच्छा, अब उनके रहने के स्थान

0: के बारे में बात करेंगे कि बकरियों को जो रहने की जगह होगी उसको आपने बनाया होगा,
1: जी एक
0: किस तरह
1: सेट
0: से,
1: बना के
0: हाँ
1: रखी है
0: किस तरह
1: मैम,
0: से आपने तैयार किया?
1: एक सेट है लकड़ी का खंबा की तरह बनाई है, जहाँ नीचे पक्का है,
0: जी
1: ऊपर मचान डाले उसके ऊपर बकरियों को बैठाती है।
0: तो कुछ बड़े और कुछ छोटे को अलग रखना
1: जी जी
0: पड़ता
1: जी
0: होगा ना,
1: जी
0: वो किस तरह से करते हैं?
1: बड़े लोग को हम लोग मचान पे बैठा देते हैं, बच्चे लोग के लिए नीचे फर्श में बस्ता वगैरह बिछा के उसके ऊपर बच्चे लोग को बैठाती है। छोटे बच्चे कहीं निकल मुकल जाएंगे तो उसे टोकरी से भी ढाक के रखना पड़ता है।
0: अच्छा, तो फर्श क्या पक्के का, उसको फिर साफ सफाई
1: जी जी
0: करके
1: जी
0: करना,
1: करना पड़ता है,
0: क्या से
1: जैसे
0: साफ करते हैं आप?
1: हम लोग झाड़ू मारते हैं नीचे पक्का का, तो ऐसी फिनाइल मिला डाल के भी धो देते हैं ताकि कुछ स्मेल
0: क्योंकि
1: वगैरह
0: जो,
1: ना आए।
0: हाँ क्योंकि
1: जी
0: ये
1: हम लोग
0: बरसात का
1: टॉयलेट
0: मौसम
1: वगैरह
0: है,
1: भी करते हैं
0: बिल्कुल
1: ना तो
0: बिल्कुल।
1: स्मेल आती है, तो उसके लिए हम लोग धोना पड़ता है।
0: तो इसके लिए भी आपको समय निकालना पड़ता
1: जी
0: होगा
1: जी
0: ना,
1: जी जी
0: साफ सफाई के लिए,
1: जी
0: तो बड़े आराम से आप कर लेती हैं।
1: जी मैम करना पड़ता है मैम, पाली है तो जिम्मेदारी तो उठाना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने उसके बकरियों की रहने की जगह, उसके खाने के बारे में आपने बताया। जब बकरियां बीमार पड़ती है तब आप क्या करती हैं, क्या घरेलू इलाज करती है या फिर आप वेटनरी से संपर्क करती हैं?
1: घरेलू भी कर लेते हैं मैम, पहले देखती हैं उनको बीमारी क्या है, जैसे
0: अच्छा
1: सुस्त है, नहीं खाते पीते, पागुर वगैरह नहीं करते हैं, तो क्या हम लोग उसको धूप का धुआं देते हैं जिससे स्लो जो सुस्तीपन है वो थोड़ा तो हट जाता है,
0: अच्छा
1: या हद से ज़्यादा खा लें से भी स्लो पाचन नहीं होता है, उससे भी स्लो को तकलीफ होती है, तो अपना घर में जैसे रहता है इनो वगैरह कुछ ऐसी पिला देते हैं उनको, फिर
0: अच्छा
1: भी अगर आराम नहीं होता तो मैं वेटनरी से जाके दवाई लेती हैं, ऐसा करके उन लोगों को बचाती
0: तो
1: हैं।
0: के वहाँ वेटनरी की सुविधा अच्छी है,
1: जी मैम है,
0: जब भी जाते हैं दवाई इत्यादि
1: दे देते
0: समय
1: दे
0: पर
1: दे
0: मिल
1: जी जी
0: जाता है,
1: जी
0: वो लोग आते हैं कभी?
1: जी मैम आते हैं कभी,
0: अच्छा
1: वैक्सीन वगैरह लगाने
0: हाँ
1: के लिए
0: हाँ
1: आते हैं, लेकिन गाभिन बकरी रहने से वैक्सीन नहीं लगाया जाता उस टाइम में, तो फिर उस टाइम नहीं लगाते लोग।
0: तो जो टीकाकरण होता है वो लोग खुद आकर करते हैं,
1: जी
0: आकर करते हैं,
1: आते हैं
0: तो आपको जाकर इन्फॉर्म करना पड़ता होगा, बताना पड़ता होगा ना
1: जी जी
0: उनको।
1: नहीं, उन लोग अपना हिसाब से आते हैं मैम, आके
0: अच्छा
1: घर घर पूछते हैं वैक्सीन लगाना है, उन लोगों को तो नहीं पता ना कौन बकरी कब
0: कौन बकरी
1: गाभिन
0: का,
1: है,
0: जी जी
1: जो हम लोग बताते वो हिसाब से फिर लोग करती है।
0: तो आप कैसे ध्यान रखती है कि इस बकरी को, ये ने के बारे में आपने सोचा कैसे, कैसे ध्यान में आया आपका कि ये काम करना है?
1: कि मैं घर पर तो ऐसे ही बैठी रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ करने से अच्छा है, कितने देर खाली समय
0: खाली समय
1: बैठेंगे,
0: बैठा रहे।
1: तो मैं 12th करने के बाद मैंने क्या सिलाई पहले शुरू
0: जी
1: करी,
0: जी
1: उसका बाद फिर अपना थोड़ा मोड़ा जो है करती थी, फिर बाद में शादी होने के बाद मैम फिर ये थोड़ा सोचा और बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ने से अच्छा है, तो उसका बाद फिर मैं बकरी पालना शुरू कर दी।
0: बिल्कुल। आप बिमलीटान में रहती है, आपके गांव में ऐसी कई बहनें होंगी ना जो घर पर अभी भी बैठी
1: जी
0: होंगी,
1: जी है बहुत
0: तो
1: सारी है,
0: उनको आप क्या कहना चाहेंगी, उनको आप
1: कि
0: क्या संदेश देना
1: मैं
0: चाहेंगी?
1: इनको यही संदेश देना चाहूंगी कि आपके पास टाइम है तो जो टाइम है उसका हुनर अपना यूज करिए
0: यानी खाली ना बैठे, सिलाई कढ़ाई भी कर सकती हैं,
1: जी,
0: बकरी पालन भी कर सकती हैं,
1: जो भी
0: कोई
1: सीखे
0: भी
1: उसको
0: हाँ
1: सामने
0: सामने
1: रहिए।
0: अपने हुनर को आगे लेकर आए।
1: जी
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही कमला जी आपने। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बकरी आप पालती है वो कैसे बेचती है, बेचने के लिए ही तो रखा होगा ना,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: क्या भाव बकरी बिक जाता है आपके वहाँ से?
1: मेरा ज्यादातर तो मैम बकरा ही जाता है,
0: हाँ
1: बकरियां
0: बकरा।
1: तो कम जाती है, रेट का मतलब हाइट का हिसाब से है, ग्रोथ का हिसाब से होता
0: वेट
1: है।
0: भी होगा
1: जी
0: ना?
1: जी
0: जी
1: जी
0: हाँ
1: वो हिसाब से रहने से 20,000 तक का, ऐसा तक का जाता है,
0: अच्छा,
1: थोड़ा कम है तो 15,000 उस तरह तक
0: उस तरह
1: बेचती
0: से
1: है
0: बेच
1: जी।
0: सकते हैं, यानी अगर दो या तीन बकरी या बकरा रखने से भी अपना छोटा सा व्यवसाय करके
1: जी
0: अपनी आमदनी आराम से
1: आराम
0: कमा
1: से ला
0: सकें।
1: जी
0: तो कमला जी आप काफ़ी समय से इस काम को कर रही है, अच्छा व्यवसाय आपका चल रहा है, तो इससे आप अपनी आर्थिकी को बहुत मजबूत कर चुकी होंगी,
1: जी
0: अच्छा लगता है इस
1: जी
0: काम में,
1: मैम
0: खुश हैं।
1: जी
0: चलिए कमला जी, आज आप हमारे साथ कार्यक्रम में आई, इतनी सारी बातें की और तमाम साथियों को अपने बारे में बताया किस तरह से आप इस व्यवसाय से जुड़ी है। कार्यक्रम में आने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
1: धन्यवाद मैम।
2: पशुओं का पानी की दर से छिड़काव करें। बागवानी करने वाले किसानों को इस बात का ध्यान रखना है कि समय पर निराई गुड़ाई करें, तत्पश्चात अनुशंसित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके बाद पौधों में उचित वृद्धि एवं राइजोम के विकास के लिए पौधों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। समय पर निराई गुड़ाई करें तथा अनुशंसित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके बाद पौधों की उचित वृद्धि एवं राइजोम के विकास के लिए पौधों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि कुबड़ के घाव यानी हम सोर के उपचार के लिए पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन और डाईइथाइल कार्बामाइजीन की गोली दें तथा घाव होने पर घाव पर नीम का तेल और मरहम लगाएं। मछली पालकों को सलाह दी जाती है

0: कि तालाब में मेड़ तथा पानी के प्रवेश एवं निकास संरचनाओं का निरीक्षण करें और मेड़ों को मजबूत और सुरक्षित रखें। यदि पानी की गुणवत्ता उपयुक्त हो तो प्राकृतिक प्लवक उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद को बोरी में भरकर तालाब में रखें। मछलियों की गतिविधियां एवं पानी की स्थिति के अनुसार सामान्य रूप से आहार दें।
1: किसान साथियों, अभी आपने मौसम पर आधारित एक कृषि परामर्श सुना जो हमें केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सौजन्य से प्राप्त हुई थी। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।
2: हर चेहरा यहाँ चांद,

0: किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में समय हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था, पशु आहार में अजोला के प्रयोग से किस घटक की प्राप्ति ज़्यादा होती है। तीन विकल्प भी हमने आपको दिए थे, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। साथियों, उस प्रश्न का सही उत्तर है प्रोटीन। अजोला में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जाँच कर ली होगी। साथियों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: श्रोताओं, अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री हमीदुल्ला द्वारा लिखा नाटक अपना अपना दर्द।

0: छोटे।
1: हाँ रवि बाबू।
0: तेरी तो सांस फूल रही है, कहाँ से आ रहा है?
1: दूर निकल गया था।
0: इस वक्त रात को 10 बजे?
1: लोली शाम तक लौटी नहीं, उसे देखने निकल गया।
0: पर तू तो बुरी तरह हाँप रहा है।
1: अपंग हो ना, थकते की इस गाड़ी की ये छोटे छोटे पहिए ही मेरे पैर हैं। हाथ से पहिए चलाते चलाते थक जाता हूँ, फिर सड़क पर साइकिल स्कूटर बसों की भीड़ में बचते बचाते बहुत थकान हो जाती है।
0: ठीक है ठीक है, आराम से बैठ जा।
1: लोली नहीं लौटी अभी तक?
0: आ जाएगी,
1: लेकिन पहले कभी इतनी देर नहीं की उसने।
0: तेरी तरह छोटी बच्ची तो नहीं, परेशान क्यों होता है? अरे आ जाएगी भाई।
1: ये लोग हम अपंगों को बहुत तंग करते हैं।
0: सब में कोई ना कोई कमी होती है छोटे।
1: सब में कहाँ होता है रवि बाबू, ये तो हम जैसे अभागे ही हैं कुछ।
0: नहीं नहीं, सब में कोई ना कोई कमी जरूर होती है।
1: हमारी तो मजबूरी है ना।
0: मजबूरी भी सब में होती है। मुझे ही देख, मैं तो अपंग नहीं हूँ, लंबा पूरा हूँ।
1: हाँ वो तो है,
0: लेकिन कमी मुझ में भी है और मजबूरी भी।
1: कैसी मजबूरी?
0: तो सुन, मैं बेरोजगार हूँ जानता है। इस बरगद के पेड़ के नीचे मैं तेरे और लूली के साथ क्यों रहता हूँ?
1: क्या हमारे साथ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता?
0: अच्छा लगता है।
1: फिर मजबूरी क्या है?
0: बरगद के इस पेड़ के नीचे तुम्हारे साथ रात को आराम के लिए मुफ्त जगह मिल जाती है, सुबह मैं काम की तलाश में निकल जाता हूँ। यही मेरी मजबूरी है छोटे।
1: लूली अभी तक नहीं आई?
0: पहले तू गाड़ी एक तरफ रख दे, आराम से बैठ जा। पानी पिएगा? प्यास लगी होगी, बहुत थक गया है।
1: प्यास ही नहीं, भूख भी लगी है।
0: लो पानी पी।
1: लाओ रवि बाबू लाओ।
0: मेरे पास डबल रोटी के कुछ टुकड़े हैं, ले इसे खा ले।
1: नहीं नहीं,
0: क्यों?
1: जब तक लूली नहीं आएगी मैं कुछ नहीं खाऊंगा।
0: मैं तुझे कैसे समझाऊं, लूली आ जाएगी भाई, मुझे उम्मीद है।
1: मुझे मुझे तो डर लग रहा है।
0: कहीं कोई डर नहीं है,
1: मन में
0: मन के अंदर भी और बाहर भी कहीं कोई डर नहीं है। डर तो हम खुद अपने मन में पैदा करते हैं। ले ये लिखा।
1: नहीं, लूली के लौटने की राह देखते हैं पहले।
0: तेरी मर्जी। अच्छा जब तक लूली लौटे ये बाजा सुन।
1: पहले एक बात बताओ रवि बाबू,
0: क्या?
1: ये टीन का बाजा तुम अपने गले में क्यों लटकाए रहते हो?
0: जब मन उदास हो जाता है ना, मैं इसे बजाता हूँ।
1: अपनी भी अजीब कहानी है रवि बाबू। जब छोटा था पोलियो हो गया, दोनों पैरों का बढ़ना बंद हो गया, लाचार हो गया। एक दिन माँ बाप अकेला छोड़ गए, नए मकान में मजूरी कर रहे थे, पट्टियाँ टूट गई, दब गए दोनों बेचारे। बस चाचा चाची के पास रहने लगा, कभी उनका प्यार नहीं मिला, सब सुख के साथ होते हैं।
0: लेकिन फिर क्या हुआ?
1: चाची बार बार ताने देती, क्या लूली लंगड़ी औलाद है। एक दिन चाची से मैंने कहा इसमें मेरा क्या दोष है, चाची ने बहुत मारा मुझे।
0: बहुत मारा?
1: हाँ घर से भी निकाल दिया।
0: घर से?
1: और किसी तरह यहाँ तक पहुँचा, यहाँ लूली मिल गई, मेरी ही तरह अपाहिज पर दिल की बहुत बड़ी प्यारी प्यारी सगी बहन जैसी। लूली नहीं आई अभी तक, मन उदास है। अपना यह टीन का बाजा सुनाओ रवि बाबू।

0: ये लो, एक चित्र और तैयार हो गया। कैसा बना है रवि बाबू?
1: देखे, बहुत सुंदर। ये औरत और बच्चे की तस्वीर तो बहुत सुंदर बनाता है छोटे।
0: बस यही चित्र तो बना पाता हूँ मैं। जानते हो रवि बाबू, इस औरत का चित्र मेरी माँ की सूरत से मिलता है।
1: पर तूने बताया कि जब तेरी माँ नहीं रही तो बहुत छोटा था।
0: छोटा तो था पर एक धुंधली सी तस्वीर है मन में। और जानते हो ये बच्चा कौन है?
1: नहीं जानता, तू बता।
0: ये मैं हूं, मैं।
1: तू तू है?
0: क्यों, मैं नहीं हूं क्या? बस मेरे पैर ही तो लूली आ रही है।

0: नहीं जानता, तू बता।
1: ये मैं हूं, मैं।
0: तू तू है?
1: क्यों, मैं नहीं हूं क्या? बस मेरे पैर ही तो लूली आ रही है।
0: कल की तरह देर नहीं की इसने आज,
1: जल्दी आ गई, कोई बात है?
0: तू हमेशा इसी तरह अपशगुन की बातें सोचता है।
1: हम जैसे अपाहिजों के लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं है। वैसे लूली और मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं जीती, भीख नहीं मांगते। वो बाजार से कैलेंडर लाकर बेचती हैं, मैं स्त्री और बच्चे का चित्र बनाता हूँ, फिर भी ये लोग हमें जीने नहीं देना चाहते। लूली आ रही है धीरे धीरे, बैसाखियों के सहारे। लेकिन लेकिन ये साथ में कौन है?
0: कौन है?
1: पहचानता हूँ मैं।
0: कौन हो सकता है? शायद कोई तेरी बनाई तस्वीर खरीदने के लिए आ रहा है।
1: नहीं नहीं
0: फिर कौन है?
1: मैंने पहचान लिया,
0: कौन है?
1: ये मंगलू दादा है।
0: मंगलू कौन?
1: ये इस इलाके का दादा है, यहाँ रहने का हमसे हफ्ता वसूल करता है, हमारी कमाई में हिस्सा मांगता है।
0: क्या ये जमीन इसकी है?
1: इसका कुछ नहीं है।
0: तो ये अन्याय है, गुंडागर्दी है।
1: बहुत पिए हुए लगता है, देखो पैर लड़खड़ा रहे हैं।
2: देख ले हरामी, अपनी आंखों से देख ले, तुझे देने को हमारे पास कुछ नहीं है आज।
3: मेरा नाम मंगलू है लूली, सब देख लूंगा, सब को देख लूंगा। तुम दोनों बड़े चालाक हो, तुमने जरूर पैसे छुपा के रखे हैं, अभी देखता हूँ। बे छोटे, बे बता पिल्ले, पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं?
1: सच कहता हूँ मंगलू भैया, सच कहता हूँ, आज हमारे पास एक पैसा भी नहीं है।
2: मंगलू छोटे से कुछ मत बोल।
3: नहीं बोलेगा तो ना बोल, तो चुपचाप पैसे दे दे, बस पैसे लेकर चला जाऊंगा, जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा।
1: पैसे नहीं है मंगलू भैया, पैसे नहीं है।
3: चुप कर बे। ए लूली, इसे चुप रहने को कह दे, मैं बहुत बुरा हूँ। हाँ, अरे आप क्या चीज है?
0: मैं रवि हूँ।
3: रवि हो या कवि, कवि हो या रवि, पहले तो देखा नहीं कभी तुमका।
0: मैं इस शहर में नया नया आया हूँ।
3: तो कविता पढ़ने?
0: काम तलाश करने।
3: तो भाई यहाँ क्या कर रहे हो?
2: ये हमारे मेहमान है मंगलू।
3: मेहमान है तो इनसे हमारा परिचय कराओ, जितनी जल्दी हमें जान लेंगे उतना ही इनका फायदा है।
0: ये तो तुमने जान ही लिया है कि मेरा नाम रवि है।
3: जी हाँ, अब आगे चलिए।
0: ये भी बता चुका हूँ कि यहाँ काम की तलाश में आया हूँ।
3: हाँ भाई, हमें तो वो बात बताओ जिसे हम नहीं जानते।
0: सारे दिन काम की तलाश करता हूँ।
3: हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा तो उसके बाद क्या करते हो?
0: रात बसर करने यहाँ चलाता हूँ।
3: तो ये बात हुई कि श्रीमान जी कोई काम ही नहीं करते?
2: काम तो तू भी कुछ नहीं करता मंगलू।
3: देख लूली, जब दो शरीफ आदमी बात करते हैं ना, तो तीसरा बीच में नहीं बोलता। हाँ तो काम तो कुछ करते नहीं, रात बसर करने यहाँ आ जाते हैं। कितने दिन से रात बसर कर रहे हो? या
0: हफ्ते भर से।
2: मंगलू रवि बाबू हमारे मेहमान हैं।
3: अरे तो मुझे इसमें कोई एतराज थोड़े ही है। तो रवि बाबू कान खोल कर सुन लो, ये जगह तुम्हारे बाप की नहीं है।
0: तुम्हारे बाप की है?
3: यानी मुफ्त की नहीं है भाई, यहाँ रहने का हफ्ता लगता है, और किसी भी शरीफ आदमी ने मुझे हफ्ता देने से आज तक इनकार नहीं किया।
0: लेकिन तुम हो कौन?
3: भाई वाह वाह वाह, मजा आ गया। ये हमसे पूछते हैं कि हम हैं कौन। अरे भाई, तुम्हें क्या हम शरीफ आदमी नहीं दिखाई देते?
0: नहीं।
3: क्या कहा, नहीं? अरे धीरे धीरे सब जान जाओगे।
0: मैंने तुम्हारी बात से सिर्फ ये जाना है कि तुम नाहक यहाँ रहने वालों को परेशान करते हो, उनसे हफ्ता वसूल करते हो, जबकि तुम्हारे इस जगह पर कोई अधिकार नहीं।
3: तरह की तरह टेटे किए जा रहा।

0: मेरा ही यार, अभी नया नया आया है ना, धीरे धीरे सब जान जाएगा। बच्चों, यहाँ हमारा अधिकार है, हमारा हफ्ता लाओ।
1: मैंने कहा ना, मैं कोई हफ्ता नहीं दूंगा।
0: तुम दोगे, तुम जरूर दोगे, पर सीधी तरह नहीं, उसका ढंग अलग होगा। अच्छा अच्छा, तो माचिस है तुम्हारे पास?
1: सिगरेट पियोगे?
0: हमारा खेल तो बिना सिगरेट के होता है। लूली, तेरे कैलेंडर कहाँ है? नहीं बताएगी तो मुझे खुद उठना होगा।
2: मैं लाती हूँ।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और तेरी बनाई तस्वीरें कहाँ है छोटे? सीधी तरह निकाल दे।
1: तुम चाहते हो?
0: अभी देख लेना।
3: ये रही तस्वीरें,
2: ये कैलेंडर।
0: अब मेरा काम शुरू होता है, खेल शुरू। 1, 2, 3, ये माचिस, ये कैलेंडर और ये लगी तस्वीरों में आग। अब लूली की बैसाखी में आग, और ये लगी छोटे की गाड़ी में आग।
2: नहीं,
0: किसी ने अगर आग बुझाने की कोशिश की तो पाँव तोड़ दूंगा।
3: मंगलू, मंगलू गाड़ी छोड़ दे। मंगलू, मंगलू मेरी गाड़ी छोड़ दे। मंगलू, मंगलू मेरी गाड़ी छोड़ दे। मंगलू, मंगलू
1: जलील इंसान, लानत है तेरी जिंदगी पर।
0: और जोर से चिल्ला, कोई फायदा नहीं।
1: तुझे नौ पंखों पर तरस नहीं आता?
2: सब सब लेकर चला गया।
3: सब जल गया।

0: सब जला कर चला गया।
1: सब जल गया, आग बुझ गई।
2: मैं तुम्हारी उदासी समझता हूँ लुली, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं खुद तुम्हारी तरह एक मजबूर इंसान हूँ, हालात से लड़ता हुआ।
0: मैं उदास नहीं हो रही बाबू, उदास तो उस दिन भी नहीं हुई थी जिस दिन उस आदमी ने मुझसे धोखा किया, जिसके फायदे के लिए हम स्टेशन पर कच्ची दारू ले जाने का धंधा करती थी। वो कहता था, दुलारी हम तुमसे शादी बनाएगा। एक दिन स्टेशन पर लाइन पार करते रेल से पांव कट गया। उस आदमी ने हमें पहचानने से मना कर दिया, बोला हम इस लड़की को नहीं जानता। उस दिन मन को बहुत धक्का लगा और उसी दिन मैं दुलारी से लूली हो गई।
1: अपना यह टीन का बाजा बजाओ रवि बाबू, आज मन बहुत भारी है।
2: जब जीवन मुरझाने लगता है मेरा मन इसी से बहलता है। मैं पढ़ा लिखा बेकार युवक, तुम दोनों अपाहिज, ये उदासी इस तरह कब तक, कब तक?
0: मुझे एक तरकीब सूझी है रवि बाबू।
2: अच्छा, आजमा कर देखें।
1: मैं तो फिर से चित्र बनाऊंगा, स्त्री और बच्चों का चित्र।
0: नहीं।
1: क्यों?
0: ब्रश, रंग और कागज के लिए पैसे?
1: हाँ, पैसे तो चाहिए, मैं तो भूल गया था। तुझे क्या तरकीब सूझी?
0: बताती हूँ छोटे, तू ढोलक बजाता है ना?
1: बजाता हूँ, पर ढोलक तो मंगलू दादा ने आग में जला दी।
0: वो बात छोड़, ढोलक का इंतजाम हो जाएगा, फिर तो बजाएगा ना?
1: एकदम फर्स्ट क्लास, तक दिना दिन तक।
0: रवि बाबू, तुम्हारे ये टीन का बाजा?
2: अगर हमारी परेशानी इससे दूर हो सकती है तो मैं इसे जरूर बजाऊंगा।
0: इससे हमारी दो वक्त की रोटी चलेगी, कोशिश कर देखते हैं। छोटे ढोलक बजाएगा, तुम ये बाजा और मैं।
1: तू क्या करेगी?
0: मैं नाचूंगी।
1: तू तो लंगड़ी है, तू नाचेगी?
2: लोग हंसेंगे नहीं क्या?
0: लोग तो हंसते ही रहते हैं हम पर, मैं चाहती हूँ लोग मेरा नाच देखें।
1: लंगड़ी का नाच?
0: और हंसे, बच्चे खुश हों, लोगों को हम अपने पर हंसा सके, इसी में हमारी जीत है।
1: फिर तो हमें खूब पैसे मिलेंगे।
0: उम्मीद तो है।
2: तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो लूली।
1: सचमुच लूली बड़ी।

0: हिम्मत वाली है।
1: मैं तो मन में हमेशा तुम्हारी तारीफ करता हूँ। कभी कभी तो तुम दोनों किसी फिलोसोफर की तरह बातें करते हो।
2: कैसे?
1: वो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है।
2: मैंने ऐसा क्या कह दिया?
1: जैसे अभी कहा ना, लोगों को अपने पर हंसाने की कोशिश करना, उनका दिल बहलाना, अपने पर हंसना और दूसरों को अपने पर हंसाना बड़ी मुश्किल होती है लुली।
2: अच्छा, अब काम की बातें करें। बाजा तो तुम्हारे पास है ना?
1: बिल्कुल।
2: ढोलक किराए पर मिल जाएगी?
0: तो फिर काम शुरू
2: शुरू।

0: वारे लंगड़ी वारे लंगड़ी क्या नाच रही है लंगड़ी लंगड़ी वो लंगड़ी का नाच है भाई कमाल करता है
1: कमाल
0: कैसी कैसे
1: लंगड़ी
0: अरे वाह
1: वाह भाई लंगड़ी वाह क्या नाचती है रे
0: वाह
1: वाह वाह लंगड़ी का कमाल देखो लंगड़ी का अरे वाह लंगड़ी वाह
2: आजकल तुम्हारा खेल खूब चल रहा है छोटे
3: खूब चल रहा है मंगलू दादा
2: बहुत पैसे मिल रहे हैं
3: पैसे भी मिल रहा है
2: तो सब खुश हो ना
3: लूली ने तुम्हारा हफ्ता भी दुगना कर दिया है
2: हाँ कर तो दिया है
3: देखो मैंने अपनी नई गाड़ी बनवा ली
2: वो तो देख रहा हूँ
3: लूली ने नई बैसाखी ले ली है
2: वो भी देखी है लेकिन कहाँ है लूली
3: रवि बाबू के साथ गई है तमाशे की नई जगह देखने
2: लेकिन कहाँ
3: वही ना स्कूल के पास
2: स्कूल अरे हाँ छोटे ये जो छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं ना स्कूल जाते हैं ना
3: हाँ
2: तू उन्हें देखता है ना
3: रोज देखता हूँ जी
2: उन्हें देखकर तेरा मन स्कूल जाने को नहीं होता
3: होता तो है पर मैं कैसे पढ़ सकता हूँ
2: अरे छोटे जीवन में पढ़ना बहुत अच्छी बात है मालूम है मैं नहीं पढ़ा ऐसे ही फिर रहा हूँ लूली और वो बाबू तुझे पढ़ाने की बात सोचते ही नहीं है सोचनी चाहिए उन्हें काम ज्यादा हो तो फीस मुझे दो मैं तुझे भर्ती करा दूंगा फीस के पैसे हो तो अभी चल मेरे साथ
3: मैं ढोलक बजाने का काम भी करता हूँ
2: वो काम लूली किसी और से करवा लेगी
3: लूली आ रही है वो देख लूली
2: मैं अभी तेरे लिए बात करता हूँ तू मना मत करना समझा अरे लूली आओ नमस्कार बाबू बहुत खुश हो दोनों आज कोई सपना देखा है क्या
4: गरीब के सपने की कोई कीमत नहीं है मंगलू
2: लेकिन खुश तो बात हो
4: तू भी तो खुश है अब तो तेरा हफ्ता भी डबल हो गया है
2: तो सब काम ठीक ही हो रहे हैं पर एक बात पर किसी का ध्यान नहीं है
5: किस बात पर
2: लूली ये जो छोटे है ना
5: हाँ
2: ये जब अपनी उम्र के बच्चों को स्कूल जाते देखता है ना
5: तो
2: इसके मन में भी स्कूल जाने को होता है ये कह रहा था मुझसे
4: मैं इसे फालतू वक्त में पढ़ा लिया करूँगा
2: इतना टाइम है तुझे
4: मेरे पास वक्त ही वक्त है
2: वो बात अलग है स्कूल की बात कुछ और ही होती है लूली मैं एक स्कूल वाले को जानता हूँ अब भर्ती करवा दूंगा इसे
4: अगर छोटा चाहता है तो ये काम हम भी कर सकते हैं
2: ये काम तुम्हारा नहीं अब फिर तुम ठहरे काम वाले लोग
4: स्कूल में भर्ती कराने में ज्यादा वक्त नहीं लगता
2: पर मंगलू किस लिए है तुम सबकी सेवा के लिए तो है
4: क्या कहती हो लूली
5: अगर छोटे चाहते हैं तो
2: छोटे मुझे पहले से ही बता चुका है अब वो स्कूल में भर्ती होना चाहता है आज और अभी
5: क्यों छोटे
3: चाहता हूँ पर
2: ये तो तुम दोनों का आशीर्वाद चाहता है
4: अगर इसकी मर्जी स्कूल में भर्ती होने की है तो ठीक है क्यों लूली
5: ठीक है
2: फिर शुभ काम में देर क्या मुझे बस 100 का 1 नोट दे दो
5: किस लिए
2: फीस नहीं देनी है साल भर की फीस जमा करा दूंगा किताबें आएंगी स्कूल के कपड़े अब मंगलू की सेवा की मामूली फीस सब बस इस एक पत्ते में इतना सस्ता और कहीं नहीं
5: तुम सच कह रहे हो होश में तो हो ना मंगलू
2: बिल्कुल होश में हूँ मैंने कोई बेहोशी जैसी बात नहीं की है क्यों रवि बाबू
5: मेरा छोटा सा भाई स्कूल जाए इससे

0: चुप बात और क्या हो सकती है। मैं तुझे 100 रुपए देती हूँ, सब तेरी जिम्मेदारी है मंगलू।
1: सब मैं हर दिन इसे स्कूल लेकर जाऊंगा और वापस भी साथ लेकर आऊंगा।
2: फिर तेरे साथ ढोलक कौन बजाएगा लूली?
3: वो इंतजाम हम कर लेंगे, तू मन लगा कर पढ़ाई कर, हमारा आशीर्वाद है तुझे।
0: ये रुपये ले मंगलू, गिन ले।
1: अरे तूने गिन लिए तो बस गिने हुए ही है।
2: दीदी मैं मंगलू के साथ जाऊं? दीदी
1: अरे इस तरह पूछ, मैं पढ़ने जाऊं?
0: बाद में सब बता कर जाना।
1: जरूर बता कर जाऊंगा। आओ आओ चलें।

0: कुछ पता चला छोटे का?
1: नहीं, सब जगह देख लिया।
0: मैं भी देख आई, रात का 1 बज रहा है।
1: कुछ समझ नहीं आता, कहाँ गया आखिर?
0: मंगलू मिला था?
1: मिला था, शराब में धुत। लगता है जो 100 रुपए तुमने उसे सुबह दिए थे उनकी वो शराब पी गया, कमीना कहीं का।
0: ये मंगलू से ना जाने कहाँ छोड़ आया है।
1: अरे दरोगा जी आ रहे हैं।
0: दरोगा जी, ये क्यों आ रहे हैं रवि बाबू? मुझे डर लग रहा है।
2: ए, छोटे यहीं रहता है क्या?
1: जी हाँ इंस्पेक्टर साहब।
2: तुम उसे पहचानते हो क्या?
1: बहुत अच्छी तरह।
0: बात क्या है रवि बाबू?
2: तुम्हारा क्या होता है वो?
0: मेरा छोटा भाई है।
2: सगा भाई?
0: सगा नहीं, लेकिन हम सब मिलजुल कर यहाँ रहते हैं।
1: यहाँ कोई हिंदू, कोई मुसलमान, सिख ईसाई नहीं,
0: यहाँ सब भाई भाई है।
1: बिना किसी मजहब या रिश्ते के भेदभाव के यहाँ बरगद के पेड़ सबको आश्रय देता है। हम सबका खून एक है, सबकी जरूरतें एक जैसी और सबकी मजबूरियाँ भी।
0: हम सब एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं।
1: आपको छोटे के बारे में कुछ मालूम है? कहाँ है वो?
2: तुमने आखिरी बार कब उसे देखा?
1: सुबह जब वो मंगलू के साथ स्कूल में भर्ती होने गया था।
0: वो अभी तक नहीं लौटा साहब।
1: जब शाम तक वो नहीं आया तो हमने उसे तलाश किया, कहीं नहीं मिला। रात का 1 बज रहा है, पहले कभी वो इतनी रात तक बाहर नहीं रहा।
2: तुम्हें उसके लौटने की उम्मीद है?
0: हाँ हाँ दरोगा जी, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता।
2: अब वो कभी नहीं लौटेगा।
0: नहीं नहीं साहब।
1: क्या कहा आपने?
0: ऐसा मत कहिए।
2: उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, लाश शनाख्त के लिए अस्पताल में है। पहचान के लिए तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा।
0: नहीं नहीं छोटे, नहीं मेरे भाई, मेरे छोटे।
1: तू चला गया छोटे, हमें छोड़कर चला गया?
0: मैंने तो सब तेरे भले के लिए किया था छोटे।
2: यहाँ वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, मेरे साथ चलो
0: छोटे। मेरे भाई, मेरे भाई।

0: आज एक महीना हो गया।
1: छोटे बहुत याद आता है, मन लगता ही नहीं।
0: वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया था।
1: उसका बनाया कोई चित्र भी नहीं है, सब मंगलू ने जला दिया।
0: मंगलू ही उसकी मौत के जिम्मेदार है। बहुत दिनों से देखा नहीं उसे।
1: जाएगा कहाँ, यही होगा कहीं।
0: एक महीने से हफ्ता लेने भी नहीं आया।
1: आ जाएगा।
0: उदासी के लम्हों में इस बाजे से बड़ा सुकून मिलता है।
1: तो फिर बजाओ रवि बाबू।

0: एक खुशखबरी है लुली।
1: हमारे लिए?
0: मुझे नौकरी मिल गई है।
1: तुम भी चले जाओगे रवि बाबू?
0: हाँ लुली, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे साथ।
1: मेरे साथ? मुझे लेकर जाओगी?
0: मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुम मना मत करना।
1: मुझसे मुझसे विवाह करोगी? मैं फुटपाथ पर रहने वाली

0: वाहिद लड़की हूँ रवि बाबू, सुख के सपने देखना ही मेरा नसीब है।
1: मैं जानता हूँ तुमसे अच्छी लड़की मुझे नहीं मिल सकती।
0: लेकिन मेरी ये बैसाखियाँ,
1: हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे। तुम्हारी हिम्मत की मैंने हमेशा तारीफ की है। तुम्हारे अंदर का इंसान बहुत, कदम कदम पर तुमने मुझे खड़े रहने की ताकत दी है। मेरे दुख के दिनों में तुम मेरा सहारा बनी हो। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं।
0: मुझे मुझे ये सब सपना लग रहा है रवि बाबू।
1: ये सच है, हम विवाह के बंधन में बंध जाएंगे
0: रवि बाबू।
1: और तुम अब लूली नहीं हो, मेरी दुलारी हो
0: रवि बाबू।
1: हाँ दुलारी।

श्रोताओं, अभी आप श्री हमीदुल्ला द्वारा लिखा नाटक अपना अपना दर्द सुन रहे थे। कलाकार थे सर्वश्री SP त्रिपाठी, शारदा राम, इस्माइल खान, प्रदीप कुमार और कुमारी रेहाना बीबी, तथा इस नाटक की प्रस्तुतकर्ता थी कुमारी मुमताज़।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7 बजे है।

का कार्यक्रम होगा युवा संसार। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8 बजे।

श्रोता, हम आपको पुनः एक बार याद दिला दें कि फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का लुत्फ तो उठाइएगा 7:20 पर। सात बजकर तीस मिनट पर युववाणी कार्यक्रम के तहत पत्रिका

कल सवेरे 7 बजे सुनिए कार्यक्रम देश रागिनी। सात बजकर 30 मिनट पर गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8 बजकर 30 मिनट पर आप विभिन्न कलाकारों को सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने कानन लीजिएगा 9 बजे।

9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप पंडित जितेंद्र अभिषेक का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुन पाएंगे। दिन में 10 बजे सुनिए कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। दिन में 11 बजे हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। निकोबारी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 11:30।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंडमान निकोबार पुलिस का साइबर अपराध के विरुद्ध शानदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सभी मानकों पर किया बेहतर प्रदर्शन। सांसद विष्णु पदरे ने रेफर मरीजों के लिए बड़ी आर्थिक सहायता और स्वास्थ्य सुविधाओं पर केंद्र सरकार व प्रशासन का जताया आभार। ब्रह्म कुमारीज ने JNRM में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। और राजधानी श्री विजयपुरम में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हुई। इस अवसर पर देर रात तक खुलेगा श्री राधा गोविंद मंदिर।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेटा। अंडमान निकोबार पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई 92वीं प्रगति समीक्षा बैठक में 1 जनवरी से 20 अगस्त तक के प्रदर्शन की समीक्षा में अंडमान निकोबार ने सभी निर्धारित मानकों पर बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया। इस दौरान साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों को 1,72,51,012 रुपये की राशि वापस दिलाई गई। पुलिस ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज करने की न्यूनतम सीमा 1,00,000 से घटाकर 50,000 रुपये कर दी है। नागरिकों से साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर सूचना देने की अपील की गई है। सांसद विष्णुपद रे ने आयुष्मान भारत योजना के तहत रेफर मरीजों के लिए आर्थिक सहायता और सुविधाएं बढ़ाने पर केंद्र सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। श्री विजयपुरम स्थित सांसद कार्यालय में आज हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 21 अक्टूबर को उन्होंने उपराज्यपाल के समक्ष रेफर मरीजों की सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए थे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य समिति की बैठक में इन पर विचार के बाद रेफरल दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया। स्वास्थ्य सचिव ने 28 अगस्त को इसकी लिखित जानकारी दी। ये बदलाव 1 अगस्त से प्रभावी हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब आय सीमा 3,00,000 से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए कर दी गई है और पात्र मरीजों को 5,00,000 रुपए तक कैशलेस इलाज मिलेगा। मरीज और एक सहायक को इकोनॉमी क्लास हवाई यात्रा के लिए अधिकतम 40,000 रुपये मिलेंगे। सभी रेफर मरीजों को 1,000 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 20 दिन का मजदूरी नुकसान मुआवजा मिलेगा। स्ट्रेचर का खर्च प्रशासन अग्रिम देगा और एयरपोर्ट या हार्बर से एम्बुलेंस या कैब के लिए 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति होगी। गंभीर मरीजों के एयर एम्बुलेंस का खर्च प्रशासन उठाएगा और सरकारी एजेंसियों के साथ व्यवस्था अंतिम रूप में है। जीवपंत अस्पताल में MRI सुविधा अंतिम चरण में है। दवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए 30 करोड़ रुपए अलग रखे जाएंगे। सांसद ने कहा कि इन फैसलों से मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी।
1: हाल ही में अंडमान निकोबार दक्षिणों में भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक तोहफा दिया है, खास करके आशा वर्कर का जो नीचे में काम कर रहा है। उन लोग को ऐसे 700 कार्यकर्ता अंडमान में आशा वर्कर है, इनको मिलता था पर मंथ 2,000 रुपया। एक कैशलेस ट्रीटमेंट, मैक्सिमम इनकम सीलिंग, कौन आदमी इसको आयुष्मान कार्ड में आएगा, इंटरटेनमेंट ऑफ इनकम 3,00,000 अभी कर दिया 5,00,000। 5,00,000 इनकम लिमिट के अंदर में सब आयुष्मान कार्ड में आएगा। इस आयुष्मान कार्ड आने के बाद में वो एंटरटेनमेंट बन जाएगा। अभी बेनिफिट क्या है, क्या मिला भारत को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जो आयुष्मान भारत में आयुष्मान कार्ड में आएगा 21 अक्टूबर 25 साल से पेशेंट को स्पेशल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज मिलेगा, आर्थिक मदद मिलेगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है जागरूकता कार्यक्रम और जन्माष्टमी महोत्सव। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय की NSS इकाई 4 की ओर से आज महाविद्यालय के व्याख्यान कक्ष में नशे से परे अपने आंतरिक प्रकाश की ओर विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन NSS कार्यक्रम अधिकारी डॉ. तमिल भारतन टीके ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता JNRM की नशा विरोधी समिति के अध्यक्ष KV रमना मूर्ति ने की। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारीज की प्रभारी शर्मिष्ठा ने सकारात्मक सोच और आत्म जागरूकता पर संवादात्मक सत्र आयोजित किया। उन्होंने ध्यान, आंतरिक शांति और नकारात्मक प्रभावों से दूर रहने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और अच्छी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य डॉ. पर्ल देवदास ने विद्यार्थियों को आत्म जागरूकता के लिए प्रेरित किया। राजधानी श्री विजयपुरम के RGT रोड स्थित श्री राधा गोविंद मंदिर में कल और 5 सितंबर को जन्माष्टमी

में महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था रहेगी। मंदिर कल सुबह 6 बजे से 5 सितंबर की रात 1 बजे तक और 5 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। जन्माष्टमी के अवसर पर कल शाम 6 बजे मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं को भगवान श्री राधा गोविंद का आशीर्वाद प्राप्त करने का आग्रह किया है। श्री विजयपुरम के सिप्पीघाट स्थित बागवानी अनुसंधान फार्म में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान और प्लांटेशन क्रॉप्स संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा विश्व नारियल दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय था अनिश्चितता के दौर में नारियल, खाद्य, ऊर्जा और आजीविका की सुरक्षा। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अजित वरुण वामन ने किसानों को नारियल के साथ दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जायफल, अदरक, हल्दी, केला और अनानास जैसी फसलें उगाने के तरीके बताए गए। किसानों को नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले उपकरण और नारियल छीलने की मशीन का इस्तेमाल करके भी दिखाया गया। द्वीप सिनरब उपकरण की मदद से दालचीनी की कटाई करके दिखाई गई। कार्यक्रम में किसानों ने विशेषज्ञों से सवाल पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से पीएचसी बिलीग्राउंड में राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ईएनटी और श्रवण जांच शिविर आयोजित किया। शिविर में लोगों को कान, नाक और गले तथा श्रवण संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान, रोकथाम और उपचार की जानकारी दी गई। शिविर में 107 लोगों की ईएनटी जांच, 22 नवजात शिशुओं की श्रवण जांच और 25 लोगों की ऑडियोमेट्री जांच की गई। 6 लोगों को दिव्यांगता आकलन और 11 लोगों को श्रवण यंत्र के लिए अनुशंसित किया गया। डॉक्टर गणेश सामदार के नेतृत्व में आयोजित शिविर में ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर लेखा भंडारू और ऑडियोलॉजिस्ट सुप्रीत कुमार मेहर ने सेवाएं दी। कार्यक्रम में हरिनगर और स्वदेश नगर ग्राम पंचायतों के प्रधानों सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा कल हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय है हर्निया। जल्द स्वस्थ होने के लिए कम चीरा लगाकर की जाने वाली सर्जरी से जल्द स्वास्थ्य लाभ कार्यक्रम शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होगा। जीवपंत अस्पताल के सर्जरी विभाग में मिनिमल एक्सेस सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर साजी वर्गीस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में मौजूद रहेंगे और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। दर्शक इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में 2447 45 या 2456 62 नंबर पर फोन करके भाग ले सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक दिवस 2026 का राज्य स्तरीय समारोह 5 सितंबर को श्री विजयपुरम स्थित टैगोर कॉलेज के सभागार में शाम 4 बजे आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंडमान निकोबार पुलिस का साइबर अपराध के विरुद्ध शानदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सभी मानकों पर किया बेहतर प्रदर्शन। सांसद विष्णु पदरे ने रेफर मरीजों के लिए बड़ी आर्थिक सहायता और स्वास्थ्य सुविधाओं पर केंद्र सरकार व प्रशासन का जताया आभार। ब्रह्म कुमारीज ने जेएनआरएम में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। और राजधानी श्री विजयपुरम में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हुई। इस अवसर पर देर रात तक खुलेगा श्री राधा गोविंद मंदिर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं मौसम। कोलकाता स्थित मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों और जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। ये था मौसम का हाल। और अब लीजिए सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर शनिवार 5 तारीख को रात्रि 8 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और जलयान रविवार 6 तारीख को दोपहर 2 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी कैंबल बे कल रात्रि 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और जलयान शनिवार 5 तारीख को सुबह 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। स्थान के लिए जलयान की अगली यात्रा संचालित होगी रविवार 6 तारीख को। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर सोमवार 7 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और जलयान मंगलवार 8 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस पहुंचेगा। लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा कचाल नैनकौरी माकाचुआ और अफरा बे होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर एमवी सेंटिनल बृहस्पतिवार 10 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और जलयान रविवार 13 तारीख को रात्रि 9 बजे कैंबल बे से चलकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। जलयान नालंदा नैनकौरी होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर मंगलवार 8 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और जलयान बृहस्पतिवार 10 तारीख को सुबह 8 बजे कैंबल बे से छूटकर नैनकौरी होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी रानी चंगा कल प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा शहीद दीप की यात्रा पर कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा जलयान की शहीद दीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा होगी कल सुबह 8:30 पर। स्वराजदीप की यात्रा पर एमवी रंगत कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और जलयान कल सुबह 8:45 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका शहीद दीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और यह जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद दीप से स्वराजदीप प्रस्थान करेगा और जलयान कल दोपहर बाद 2:30 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। स्वराजदीप की यात्रा पर एमवी बाराटांग कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और यह जलयान कल ही दोपहर 2 बजे स्वराजदीप से शहीद दीप जाएगा तथा जलयान की शहीद दीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा होगी कल दोपहर बाद 3:30 पर। एमवी स्ट्रीट आइलैंड शहीद दीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और यह जलयान कल शाम 4:30 पर शहीद दीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराजदीप की यात्रा पर एमवी रानी चंगा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और जलयान शनिवार 5 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराजदीप से चलकर शहीद दीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ।

श्रोता लीजिए सुनिए जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 1-1-2-0-3-1-9-2-2-3-2-1-0-0, 0-3-1-9-2-2-3-3-0-7-7 और 0-3-1-9-2-2-3-2-400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जन सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं जुनून फिल्म से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और विपिन सच्चदेवा की।

हरदीप सिद्धू के संगीत निर्देशन में प्रस्तुत है समीर का लिखा तेरा मेरा प्यार फिल्म का गीत, स्वर कुमार सानू की है।

श्रोता, इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा मित्रों को समर्पित हमारा कार्यक्रम युववाणी।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर वर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार, स्वस्थ जीवन शैली और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर हमें अपने भोजन की गुणवत्ता और पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, अनाज, दूध या उसके

विकल्प तथा अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। केवल स्वाद के लिए अधिक तला भुना और पैकेट वाला भोजन खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें यह संदेश देता है कि अच्छा पोषण केवल बीमारी से बचने के लिए नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक है। बच्चों और किशोरों के लिए पौष्टिक भोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनके विकास, पढ़ाई और दैनिक कार्यों में मदद मिलती है। दोस्तों, इस सप्ताह से हमें स्वयं स्वास्थ्य भोजन अपनाने और अपने परिवार तथा मित्रों को भी पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने का संकल्प लेना चाहिए। स्वस्थ भोजन ही स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव है।

0: दोस्तों, आज गुरुवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: चलिए दोस्तों, हम आपको सुनवाते हैं रूपक, जिसका विषय है कृष्ण जन्मोत्सव।

कहते हैं जब संसार में अधर्म बढ़ता है और सत्य की आवाज़ दबने लगती है, तब किसी न किसी रूप में आशा का जन्म होता है। द्वापर युग में भी एक ऐसा ही समय आया था। मथुरा का राजा कंस अपनी शक्ति और अहंकार के मद में निर्दोष प्रजा पर अत्याचार कर रहा था। चारों ओर भय था और लोगों के मन में एक ही प्रश्न, इस अंधकार का अंत कब होगा। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की आठवीं संतान कंस के अंत का कारण बनेगी। इस भविष्यवाणी ने कंस के भीतर भय पैदा कर दिया और उसने अपनी ही बहन देवकी तथा उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की वह रात धीरे धीरे करीब आ रही थी।

जब मथुरा के उसी अंधेरे कारागार में एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला था जो आगे चलकर केवल कंस का अंत ही नहीं करेगा, बल्कि मानव जीवन को कर्म, प्रेम और सत्य का अर्थ भी समझाएगा। वह बालक थे श्री कृष्ण।

कंस ने देवकी की 6 संतानों का वध कर दिया था और 7वीं संतान के बारे में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। अब 8वीं संतान का समय निकट था। देवकी और वासुदेव जानते थे कि आने वाला समय उनके लिए कितना कठिन है, फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं यह विश्वास था कि उनकी संतान साधारण नहीं होगी। कारागार की दीवारें ऊंची थी, द्वार बंद थे,

उत्तान का समय निकट था। देवकी और वासुदेव जानते थे कि आने वाला समय उनके लिए कितना कठिन है, फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं यह विश्वास था कि उनकी संतान साधारण नहीं होगी। कारागार की दीवारें ऊंची थी, द्वार बंद थे और पहरेदार हर समय निगरानी करते थे। बाहर कंस का आतंक था, लेकिन भीतर एक माँ अपने आने वाले बच्चे की प्रतीक्षा कर रही थी। यह प्रतीक्षा केवल एक संतान के जन्म की प्रतीक्षा नहीं थी, यह अत्याचार के अंत की उम्मीद भी थी। अंततः भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि आई। वातावरण शांत था, चारों ओर गहरा अंधकार था। उसी समय देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार वह साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण थे। उनके जन्म के साथ ही जैसे उस अंधकार में आशा की पहली किरण दिखाई दी।

श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यंत भावपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि उनके जन्म के समय कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने अपने सामने एक अद्भुत बालक को देखा। यह वही पुत्र था जिसके कारण कंस भयभीत था और जिसकी प्रतीक्षा मानो पूरी धरती कर रही थी। लेकिन माता पिता की खुशी के साथ चिंता भी जुड़ी थी। उन्हें पता था कि यदि कंस को इस बालक के जन्म का समाचार मिल गया तो उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में वसुदेव ने बालक को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का निर्णय लिया। कहा जाता है उसी समय कारागार के द्वार खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में चले गए। वसुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें लेकर कारागार से बाहर निकल पड़े। यह दृश्य कृष्ण जन्मोत्सव की कथा का सबसे भावपूर्ण हिस्सा है। एक पिता अपने नवजात पुत्र को लेकर अंधेरी रात में निकल पड़े, क्योंकि उनके लिए पुत्र की रक्षा से बढ़कर कुछ नहीं था।

बाहर तेज वर्षा होने लगी। रात अंधेरी थी और सामने यमुना नदी उफान पर थी। वसुदेव के सामने रास्ता कठिन था, लेकिन उनके कदम रुकने वाले नहीं थे। सिर पर टोकरी में नन्हे कृष्ण थे और मन में केवल एक चिंता, उन्हें सुरक्षित गोकुल पहुंचाना। धार्मिक मान्यता के अनुसार यमुना की धारा भी कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाने के लिए शांत हुई। शेषनाग ने वर्षा से बाल कृष्ण की रक्षा की। यह प्रसंग श्री कृष्ण की जन्म कथा को और भी अद्भुत बना देता है। अंततः वासुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा के घर उस समय यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़ दिया और उस बालिका को अपने साथ मथुरा ले आए। फिर वे कारागार में लौट आए। जैसे ही कंस को बालिका के जन्म का पता चला, वह उसे भी समाप्त करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह बालिका उसके हाथ से निकलकर देवी के रूप में प्रकट हुई और उसे चेतावनी दी कि उसका विनाश करने वाला जन्म ले चुका है। इस तरह कृष्ण की रक्षा की पहली परीक्षा पूरी हुई।

मथुरा में जन्मे कृष्ण अब गोकुल में नंदलाल कहलाने लगे। नंद बाबा और यशोदा ने उन्हें अपने पुत्र की तरह पाला। कृष्ण का बचपन किसी राजमहल में नहीं बल्कि गोकुल की मिट्टी, गायों और ग्वाल बालों के बीच बीता। यशोदा के लिए वे उनका लाडला कन्हैया थे और पूरे गोकुल के लिए आनंद का कारण। कृष्ण की बाल लीलाओं की कथाएं आज भी घर घर में सुनाई जाती हैं। कभी वे माखन चुराते, कभी अपने मित्रों के साथ शरारत करते और कभी यशोदा मैया की डांट खाते। उनकी नटखट मुस्कान ने गोकुल के लोगों के जीवन में खुशियां भर दी। यही कृष्ण के जीवन की खूबसूरती थी। जन्म से ही असाधारण होने के बावजूद उन्होंने अपना बचपन बिल्कुल सहज ढंग से जिया। उनके जीवन का यह चरण हमें बताता है कि महानता के लिए दिखावा आवश्यक नहीं होता, सादगी में भी असाधारण व्यक्तित्व जन्म ले सकता है।

कृष्ण की बाल लीलाएं केवल मनोरंजन की कथाएं नहीं, उनके भीतर जीवन के अनेक संदेश छिपे हुए हैं। माखन चोरी की कथा में उनकी बाल सुलभ चंचलता दिखाई देती है, तो ग्वाल बालों के साथ उनकी मित्रता में अपनापन। वे प्रकृति और पशुओं के बीच बड़े होते हैं। उनकी बांसुरी और गायों के साथ उनका संबंध भारतीय संस्कृति में आज भी प्रेम और शांति का प्रतीक है। कृष्ण का बाल स्वरूप हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल चिंताओं और जिम्मेदारियों से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने भीतर की प्रसन्नता को भी जीवित रखना चाहिए। आज की तेज दुनिया में लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान की खुशियां भूल जाते हैं। ऐसे समय में बाल कृष्ण की मुस्कान हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेना सिखाती है। कृष्ण का बचपन कहता है कि जीवन कितना भी गंभीर क्यों ना हो, उसमें सरलता और आनंद के लिए जगह हमेशा रहनी चाहिए।

गोकुल और वृंदावन में कृष्ण का जीवन प्रेम, मित्रता और भक्ति से भर गया। ग्वाल बाल उनके साथी थे और राधा का नाम कृष्ण के साथ जुड़कर प्रेम की अमर परंपरा बन गया। कृष्ण की बांसुरी की धुन और वृंदावन की रासलीला ने भारतीय साहित्य, संगीत और नृत्य को अनगिनत रचनाएं दी। राधा कृष्ण की कथा को भक्ति परंपरा में प्रेम और समर्पण के प्रतीक के रूप में देखा गया। कृष्ण के जीवन का यह पक्ष बताता है कि मनुष्य के लिए रिश्तों का कितना महत्व है। मित्रता में विश्वास, प्रेम में सम्मान और संबंधों में अपनापन जीवन को सुंदर बनाते हैं। वृंदावन का कृष्ण हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी के प्रति सच्ची भावना और समर्पण रखने का नाम है। इसी कारण कृष्ण की बांसुरी की धुन आज भी भक्तों के मन में एक विशेष भाव पैदा करती है। वृंदावन का कृष्ण जीवन में प्रेम की मिठास घोलने वाला कृष्ण है।

समय बीतता गया और श्री कृष्ण युवा हुए। अब वह समय आ चुका था जब उन्हें मथुरा लौटना था। कंस को कृष्ण के जीवित होने का पता था और वह उन्हें अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। कृष्ण मथुरा पहुंचे और अंततः कंस के सामने खड़े हुए।

लंबे समय से जनता पर अत्याचार करने वाले कंस का अंत हुआ और मथुरा को उसके भय से मुक्ति मिली। कृष्ण के जीवन का यह प्रसंग एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना दिखाई दे, उसका अंत संभव है, लेकिन इसके लिए साहस और सही समय पर सही निर्णय की आवश्यकता होती है। कृष्ण ने अपने जीवन में केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि बुद्धि और नीति का भी उपयोग किया। यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार का भी है। कंस का अंत हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अन्याय के सामने खड़ा होना आवश्यक है।

महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने स्वयं शस्त्र न उठाने का निर्णय लिया और अर्जुन के सारथी बने। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सामने अपने ही संबंधियों और गुरुओं को देखकर विचलित हो गए। उनके मन में प्रश्न उठने लगे कि क्या अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करना उचित है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन, धर्म और कर्तव्य का अर्थ समझाया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कठिन परिस्थिति से भागना समाधान नहीं, मनुष्य को अपने कर्तव्य को पहचानना चाहिए और उचित कर्म करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन के भीतर के भय और भ्रम को दूर किया। वे केवल योद्धाओं के साथ ही नहीं बल्कि मनुष्य के मन के मार्गदर्शन भी हैं। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन का रथ संभाला, लेकिन वास्तव में उन्होंने उसके विचारों और जीवन की दिशा को भी संभाला था।

कुरुक्षेत्र में कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश कर्म और कर्तव्य से जुड़ा है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की अत्यधिक चिंता में नहीं डूबना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह है कि परिणाम के भय से हमारा कर्म कमजोर नहीं होना चाहिए। यह संदेश आज भी उतना ही उपयोगी है। विद्यार्थी परीक्षा से पहले परिणाम को लेकर चिंतित होते हैं, युवा भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं और हर व्यक्ति सफलता की इच्छा रखता है। श्री कृष्ण का कर्म योग हमें याद दिलाता है कि हमारा सबसे बड़ा अधिकार अपने प्रयास पर है। ईमानदारी से मेहनत करना, सही निर्णय लेना और असफलता से सीखना ही जीवन को आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कर्म करते रहो, विवेक बनाए रखो और परिणाम को लेकर मन की शांति मत खो।

श्री कृष्ण का जीवन जन्म से लेकर कुरुक्षेत्र तक संघर्ष, प्रेम, मित्रता, साहस, नीति और कर्म का अद्भुत संगम है। उनका जन्म अंधकार में हुआ, लेकिन उनका संदेश युगों के लिए प्रकाश बन गया। उन्होंने बचपन से हमें आनंद और सरलता सिखाई, मित्रता से विश्वास, प्रेम से समर्पण, कंस के अंत से अन्याय के विरुद्ध साहस और श्रीमद् भगवद्गीता से कर्म का महत्व समझाया। इसलिए कृष्ण

जन्मोत्सव केवल मंदिरों में सजावट करने या मध्य रात्रि में जन्म का उत्सव मनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह स्वयं को भीतर से बेहतर बनाने का अवसर भी है। जब हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं, किसी के प्रति अन्याय नहीं करते, कठिन समय में धैर्य रखते हैं और जीवन में प्रेम तथा करुणा बनाए रखते हैं, तभी कृष्ण का संदेश हमारे जीवन में उतरता है। जिस रात मथुरा के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस रात केवल एक बालक ने जन्म नहीं लिया था, एक विचार ने जन्म लिया था, एक दर्शन ने जन्म लिया था और मानव जीवन को दिशा देने वाले प्रकाश ने जन्म लिया था। यही है श्री कृष्ण के जीवन का सार है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रूपक, जिसका विषय था कृष्ण जन्मोत्सव और इसके लेखक थे दीपक कुमार सिंह। आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानो को इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं संजोग फिल्म से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी के बोल व धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में प्रस्तुत है प्रवीण भारद्वाज का लिखा आंखें फिल्म का गीत, स्वर सोनू निगम और अलका याग्निक की है।

अब लीजिए सुनते हैं आनंद बख्शी की लिखी गीत रचना। फिल्म हम किसी से कम नहीं में इस गीत को संगीत से नवाजा है अनु मलिक ने। गायक कलाकार है अलका याग्निक, सोनू निगम और अनु मलिक।

हमारे अगले गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति। आनंद बख्शी के शब्दों को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है मजबूर।

आनंद मिलिन के संगीत निर्देशन में प्रस्तुत है आनंद बख्शी का लिखा कहर फिल्म का गीत। स्वर उदित नारायण और अलका याग्निक की है।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDM में नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डेप्यूटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के 1-1 पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDM में नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वही सहायक सलाहकार संचार के पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा

0: दूरसंचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम प्रॉपर चैनल से अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफदरगंज एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुआ।
1: और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वरों में गौरव गान।

अभी आप संवेद स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:45 पर कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
4: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
5: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
4: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: Samachar Sandhya mein aapka phir swagat hai. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की

0: उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
3: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Belgian counterpart Bart De Wever call for stronger strategic partnership. Belgium backs India's fight against terrorism. India and Belgium sign pact on defence cooperation, agree to double bilateral trade in next 5 years and enhance cooperation in fields of semiconductors, critical minerals and advanced technologies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hails MSMEs for achieving 7.8% GDP growth in previous quarter. Heavy rain and release of water from barrages caused floods in 23 districts of Uttar Pradesh. Prime Minister takes stock of situation in Varanasi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kyiv welcomes Prime Minister Modi's call to end Russia-Ukraine war. And in women's cricket, Group A match underway between India and Hong Kong in 2020 Asia Cup in Dubai. And now the news in detail. India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation.

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जल संरक्षण और प्रबंधन में तकनीक और जन भागीदारी के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अशोक कुमार जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते
1: अशोक जी। भारत में जिस तरह की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, जल संकट की बात हो या फिर कुछ इलाकों में भूजल स्तर गिरने की बात कही जाती है, तो जल को बचाने के लिए कई सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो हम परिस्थिति अपने सामने देख रहे हैं, इसमें आम नागरिकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और दूसरी चीज की इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है?
2: जल के संकट के बारे में आपने बताया, बट एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे पिछले कई दशकों से जितने भी बारिश आ रहे थे, उतनी बारिश अभी भी आ रही है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वाटर मैनेजमेंट में वी आर नॉट एबल टू वाटर मैनेज द वाटर प्रॉपरली। इसलिए ये जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जल आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बदला करने के बाद ही हम मैक्सिमम वाटर सेव कर सकते हैं। वो देखते आंकड़े बताएंगे तो तकरीबन 1000 से 1100 mm रेनफॉल हर साल हमको मिलते हैं। कभी महीने में इधर उधर हो सकता है, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो हर साल बारिश जितना आना है वो आते रहते हैं, और तकरीबन 4000 billion cubic meters पानी हमको मिलता है। और जब बारिश अधिकतम होता है तो कभी कभी फ्लड्स होता है, बाढ़ हो जाते हैं और पानी बह के चले जाता है, और 6 महीने के बाद जब समर आ जाता है तो पानी की दिक्कत बढ़ जाते हैं, कई जगह पर पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। तो अगर हम ये जो बारिश में जितने पानी आता है उसी को हम संभाल के रखे, जन भागीदारी से संभाल के रखे और समर में यूज करेंगे, तो हमारा वाटर समस्या एकदम बहुत हल हो जाएंगे। इसलिए जन भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें।
1: अशोक जी, आप कई सारी योजनाओं से जुड़े रहे हैं, नेशनल वाटर मिशन की बात हो या फिर कैच द रेन अभियान की बात हो, तो ये जो अभियान हम देखते हैं आज की डेट में, इनका क्या महत्व है जल संरक्षण के लिए, और जो हमारे सामने भूजल का संकट है या फिर पीने के पानी के पर्याप्त उपलब्धता की बात करते हैं उसके लिए?
2: जैसे मैंने बताया, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज इम्प्रॉपर और इनएडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट। भारत में बहुत सारे जल भूगर्भ से, मतलब अंडरग्राउंड वाटर से निकाल के सिंचाई के लिए यूज करते हैं, पीने के पानी के लिए यूज करते हैं। अगर हम अंडरग्राउंड से पानी को खींचते रहे और वापस उसको रिचार्ज नहीं करते, तो एक ना एक दिन पानी तो खत्म हो ही जाएंगे। तो इसलिए 2021 से हमने नेशनल वाटर मिशन की तरफ से और प्रधानमंत्री के आदेश में हमने एक कैच द रेन कैंपेन शुरू किया, जिसका जिक्र आपने किया था। कैच द रेन कैंपेन में ये है कि स्लोगन द कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जहां बरसे जब भी बरसे पानी का संचयन करना है। तो ये कार्यक्रम

0: जन भागीदारी से हम कर रहे थे, क्योंकि ये बारिश सब जगह में होते, खेत में, घर में, गांव में, शहर में, सब जगह में बारिश पड़ती है। वो बारिश के पानी को अगर हम वही के वही संचय करके रखेंगे तो वाटर टेबल बढ़ जाता है, और ये पानी हम यूज करके समर में भी हमारे काम में आ जाते हैं। इसलिए ये जो कैच द रेन कैंपेन वॉज वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, एंड प्रधानमंत्री तो 2021 से इसके बारे में बोलते रहते थे। उन्होंने ही ये कैंपेन 2021 में देश भर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन के रूप में स्टार्ट किया था।
1: अशोक जी, जल संकट की जब हम बात करते हैं तो भारत के विकास और सामाजिक स्थिरता की भी यहाँ पर बात करना जरूरी हो जाती है, और साथ ही भारत में नदियों और जल स्रोतों की सफाई भी एक बड़ा टास्क हमारे लिए है, ताकि जो भी जल हमारे पास अभी उपलब्ध है उसको इस तरह से प्रभावी बनाया जाए कि ताकि उसको आराम से इस्तेमाल में लाया जा सके। तो इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है? क्या आधुनिक समय में जो हमारे पास उपकरण है, यंत्र है, उनका इस्तेमाल करना, या फिर जन भागीदारी और जन जागरूकता?
0: वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताया मैंने, और साथ ही साथ पिछले कई सालों से हमने देखा कि ये रिवर पोल्यूशन को भी एड्रेस करने के लिए काफी काम हो रहा था। उसमें एक था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे, जब हमने सब लोगों को मिला के जन भागीदारी से गंगा नदी को साफ करने के कार्यक्रम में जुट गए थे। तो ये पिछले कई सालों से अभी एनजीटी के मार्गदर्शन में हम कई जगह में वाटर रिवर्स के पोल्यूशन के लेवल मॉनिटर करते हैं, और वाटर पोल्यूशन लेवल मॉनिटर करके बताते हैं कि इस एरिया में वाटर पोल्यूटेड है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है करके। तो अमृत स्कीम के अंदर और नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट के स्कीम्स के अंतर्गत और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत कई कार्यक्रम हमने शुरू किया, क्योंकि ये जो जल में पोल्यूशन आता है रिवर्स में मुख्यतः, वो ज्यादातर सुवेज की वजह से होते हैं। शहर से गंदा पानी नदियों में छोड़ते हैं, और वो गंदा पानी अच्छे पानी से मिलके वो पानी को खराब करते थे। तो ये पिछले कई सालों से हमने एसटीपीज बनाने का कार्यक्रम शुरू किया, जहाँ पे ये स्वेज वाटर को ट्रीट करके अच्छा पानी नदी में छोड़ने का कार्यक्रम किया। इसमें काफी सफलता भी हुई है, मगर बहुत सारे काम अभी बाकी है। बहुत शहरों में अभी ये एसटीपीज बनाना है और
1: जी
0: उसको चालू कराना भी है, ये कार्यक्रम अभी चल रहा है।
1: अशोक जी, अभी आपने शहरों में पानी की पाइपलाइनों से होने वाली लीकेज की बात की है, और जो अच्छा पानी होता है उसमें गंदा पानी मिल जाता है, उससे भी समस्या आती है। तो प्रधानमंत्री ने इसके लिए कहा है कि सही योजना, पक्के इरादे, पर्याप्त संसाधन और सक्षम अधिकारियों के माध्यम से इसको एक अवसर में बदला जा सकता है, ताकि जो भी हमारे सामने इससे संबंधित दिक्कतें आ रही उनको दूर किया जाए।
0: एक्चुअली देखा जाए तो कई सालों से प्रधानमंत्री पानी के जो मैनेजमेंट के बारे में जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की बात की थी। जैसे इन्होंने कल बताया था कि सबका प्रयास के साथ हमको जल के क्वालिटी और क्वांटिटी के दोनों में मैनेज करना पड़ता है। वाटर सिक्योरिटी में समस्या आता है तो उसमें दो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, एक तो वाटर क्वांटिटी के मुद्दे होते हैं और दूसरा वाटर क्वालिटी के होता है। ये वाटर क्वांटिटी के लिए जैसे मैंने बताया, हम अगर रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे तो हमको पानी मिल सकता है, अगर हम वाटर यूसेज को रिड्यूस करेंगे तो भी हमको पानी मिल सकता है, क्योंकि अगर हम एक जगह पे 10 लीटर या 50 लीटर पानी यूज करते हैं, अगर उसका यूसेज रिड्यूस करके 10 लीटर या उससे कम करेंगे
1: जी
0: तो हमको बचत मिल जाता है, वो बचत पानी का ना सेविंग होता है। तो ये वाटर स्कैर्सिटी के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि हम पानी जो बचत करते हैं वो दैट विल बी वाटर जनरेटेड सॉर्ट ऑफ थिंग। सेकंड, हमको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वाटर सिक्योरिटी में, एक तो रीयूज ऑफ वाटर और रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर और रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, ये सब इंडस्ट्री एरिया में होता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो वाटर सिक्योरिटी के, जो वाटर क्वांटिटी के बारे में बोलेंगे, तो हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी जो आंकड़ा है वो बहुत कम है। तो जैसे प्रधानमंत्री ने बताया, अगर हम स्कीम्स तैयार करें और टेक्नोलॉजी को यूज करके और प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो हम वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ,

0: मंत्री ने बताया, अगर हम टीम्स तैयार करें और टेक्नोलॉजी को यूज करके और प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो हम वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्रीकल्चर में 85% वाटर हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, इंडिया में उनका वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत पुअर है, 30% या 33% वाटर यूज एफिशिएंसी है। अगर हम अच्छे टेक्नोलॉजी यूज करके, अच्छा इरिगेशन सिस्टम डेवलप करके या ड्रिप इरिगेशन के ऐसे यूज करेंगे तो हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो ऑफिशियल हम स्कीम्स तैयार करके लोगों को वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने का सलाह दे और उनका सपोर्ट दे, जैसे अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, बेटर इरिगेशन टेक्निक्स बताएंगे या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रचार करे, तो हम वाटर यूज एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं और डेफिनेटली हमारा वाटर समस्या कम हो सकता है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण को केवल एक सरकारी कार्यक्रम न बना करके बल्कि जन भागीदारी से जोड़ने और जल उत्सव को बढ़ावा देने की बात कही है। आज के समय में जब जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना बदस्तूर जारी है, लेकिन भूजल का दोहन भी उतना ही हो रहा है, तो क्या जन भागीदारी अकेले इस समस्या का समाधान कर सकती है या फिर हमें कानून या फिर आर्थिक प्रोत्साहन या स्थानीय संस्थाओं को इसके लिए आगे लाना पड़ेगा?
0: जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, सबका प्रयास है, सबको इन्वॉल्व करके जन भागीदारी से ही हम कर सकते हैं। जैसे आपने बताया ग्राउंड वाटर का दोहन, इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल का दोहन करने वाला देश है। हम पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए और ये इरिगेशन के लिए बहुत पानी ग्राउंड से निकाल के यूज करते हैं, तो हमको एक तो उसकी यूज कम करना पड़ता है, दूसरा उसमें रिचार्ज करने के लिए भी हमको प्रयास करना है। तो जन भागीदारी में अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो बहुत पानी हम बचा सकते हैं। पहले क्या करते थे हम लोग, डैम्स बनाते थे, तो ये जो बारिश में जो पानी गिरते हैं वो एक साथ बह के कई एक जगह पर जाके हम इकट्ठा करके वहां पे बड़े बड़े डैम्स बनाते, बकरा नांगल डैम ऐसे बनाते थे। बट अभी तो ये डैम्स बनाने में बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि वहां के एनवायरमेंटल का प्रॉब्लम आता है, सबमर्जेंस के इश्यू आते हैं, लोगों को बहुत दिक्कतें होते हैं। इसीलिए डिसेंट्रलाइज रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, तो कैच रेन कैंपेन ने जो प्रधानमंत्री ने किया वो किया। इसमें क्या किया, ये जन भागीदारी में होते हैं, बिकॉज हर एक व्यक्ति, हर एक गांव वाले, हर एक शहर वाले, हर एक आदमी इसमें अभियान में जुट सकते हैं। अपने घर में, अपने खेत में जितने भी बारिश आते हैं उसको अगर वो संचय करके रखेंगे तो वी कैन सेव अ लॉट ऑफ वाटर, वो तो भूजल का स्तर भी बढ़ा सकते हैं। तो इट इज ए डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटिक कैंपेन एंड ये जन भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री ने पानी बचाने वाली तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने की बात कही है और दुनिया के जो बेहतरीन तरीके हैं उनसे सीखने पर जोर दिया, यानी कि हम केवल अपने देश तक सीमित अगर ना रहें, भूजल बचाने के बारे में, जल संरक्षण के बारे में पूरी दुनिया से अगर अच्छी बातें सीख सकते हैं तो ये बहुत आवश्यक सी चीज है। आपको क्या लगता है इससे?
0: कई स्टेट लाइक इसराइल और नेदरलैंड्स, वो पानी में उनका बहुत दिक्कतें थे, तो उन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी की यूज करके कई नए नए आविष्कार चला के पानी का बचत किया है, पानी का वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा है और वो जनता का जो वाटर की समस्या का हल निकला। आप देखे जाए तो इसराइल के ऐसा देश है जहाँ पे हमसे बहुत कम बारिश गिरती है और वहाँ पे 92% से ज्यादा पानी वो रिसाइकल करके यूज करता है। एग्रीकल्चर में वो उनका जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा एडवांस्ड है, प्रिसिशन इरिगेशन बोलते हैं, जितना पानी चाहिए मतलब बूंद बूंद के हिसाब से वो मेजर करके पौधे को देते हैं और वो पौधा 100% वो वाटर यूज करते हैं। वो बड़ा कॉस्टली टेक्नोलॉजी है बट ये एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जहाँ पे जो रिसाइकिल का जो सिस्टम है वो इसराइल में यूज करते हैं। सिमिलरली नेदरलैंड में फ्लड को मैनेज करने के लिए वो कई टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत सारे सिंगापुर में और श्रीलंका में है, तो हम बाकी देशों से भी जानकारी ले सकते हैं। बट हमारे भारत में भी इतिहास में भी देखा जाए तो प्राचीन काल में भी हमारे जो पूर्वजों ने पानी को संभालने के लिए काफी कार्यक्रम किए थे, वो पानी को महत्व देते थे और कई जगह पे आपने टांगा देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली में अग्रसेन की बावड़ी के बारे में सब जानते हैं और रानी की बाव है जो गुजरात में, तो कई जगह में ऐसे स्टेपल्स भी है। आपको याद है मोहनजोदड़ो में भी कॉमन बाथ की बात करते थे और ड्रेन्स की बात करते थे और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की बात है, तो हमारे देश में भी बहुत सालों से वाटर हार्वेस्टिंग का प्रदा चलते आ रहा था। बट साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, बाकी देशों से भी हम लर्न कर सकते हैं और उसका अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करके हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी अशोक जी, हमारे देश में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में जो पानी इस्तेमाल होता है वो उपचारित करके उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके लिए हमें किस तरह की योजना बनानी चाहिए, कैसे उपाय करने चाहिए कि जो औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ पानी उसको हम अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सके अन्य कामों में?
0: देखो, दिस इज ए इम्पोर्टेंट

0: एस्पेक्ट, वो सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। एक तो जो पानी हम स्वेज से या इंडस्ट्रियल वे से भी निकलते, उसको ट्रीट करके हम इरिगेशन में, सिंचाई में काम लगा सकते हैं। सिंचाई में 100% प्योर वाटर देने की जरूरत नहीं है, बट इसपे अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट करके हम ये पानी हम सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। बिकॉज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इज ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो 100% प्योर होना चाहिए। अगर हम स्वेज वाटर को ट्रीट करके सफिशियंट पैरामीटर्स सफिशियंट ला करके, थोड़ा फॉस्फोरस ज्यादा रहता अभी, अब प्रॉब्लम नहीं, वो इरिगेशन में यूज करते हैं, वो पानी हम पी नहीं सकते मगर इरिगेशन के लिए काम आ सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स पे वाटर ट्रीट करके हम पानी सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं, क्योंकि जहां पे तापमान बढ़ने से आइस और ग्लेशियर मिल करके वो किसी लेक में डाल के वहां से वो पानी बहुत जोर से बाहर आ जाता है, इसी की वजह से वो बांट हुए थे। इसमें हमारे वैज्ञानिकों को बहुत सैटेलाइट इमेजरी सब यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके वी कैन प्रिडिक्ट दी फ्लो वाटर फ्रॉम दिस लेक्स। तो अगर हम सैटेलाइट मैपिंग करके या ऐसे टेक्नोलॉजी यूज करके गोल्फ ग्लोव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मेल्टिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो देन वी कैन प्रिडिक्ट फ्लड एंड रिड्यूस द डैमेज, अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली हमारे आईआईटी और टेक्नोलॉजी आईएसआरओ जैसे इंस्टीट्यूशंस को इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।
1: जी अशोक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे जल संरक्षण और प्रबंधन में तकनीक और जन भागीदारी के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कंट्री वाइड

0: के पहले भाग में आप सुनेंगे उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का गजल गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू विल लिसन टू अ गजल रिसाइटल बाय उस्ताद सलीम अल्लाह वाले।
0: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का जन्म मध्य प्रदेश के देवास में एक संगीत परिवार में हुआ। उन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु से अपने पिता और गुरु उस्ताद दद्दू खान साहब से गजल गायन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आगरा और पटियाला घरानों के महान उस्ताद हाजी अमीर मोहम्मद खान साहब से शास्त्रीय गायन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे देश के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा गजल गायन और तबला वादन दोनों विधाओं में टॉप ग्रेड से सम्मानित किया गया है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले को बचपन से ही गजल गायन के प्रति गहरा लगाव रहा है। उनके द्वारा रचित गजलें शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगीत समारोहों में गजल गायन प्रस्तुत किया है। इनमें देहरादून का विरासत समारोह, हैदराबाद का आलाप गजल समारोह और बज़्मे गजल तथा भोपाल के भारत भवन में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का जश्न उर्दू, भोपाल का बेगम ऑफ परी बाजार, जयपुर का सिंजारा समारोह, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन और लखनऊ महोत्सव शामिल हैं। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले को मध्य प्रदेश कला गौरव पुरस्कार, अभिनव कला सम्मान, संगीत शिरोमणि सम्मान, तालमणि सम्मान, चक्रधर सम्मान और प्राइड ऑफ

0: भोपाल सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले वर्ष 2023 में आकाशवाणी भोपाल में स्टाफ आर्टिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2023 में ही उन्होंने एक साथ 1500 विद्यार्थियों द्वारा तबला वादन करवाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।
1: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले वॉज बॉर्न इन देवास मध्य प्रदेश इंटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। एट द टेंडर एज ऑफ 5 ही बिगैन हिज इनिशियल ट्रेनिंग इन गजल सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फादर एंड गुरु उस्ताद दद्दू खान साहिब। ही सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड ट्रेनिंग इन क्लासिकल वोकल म्यूजिक फ्रॉम द ग्रेट माइस्ट्रो उस्ताद हाजी आमिर मोहम्मद खान साहिब of the Agra and Patiala Gharanas. He is the only artist in the country to have been awarded the top grade by the Directorate General All India Radio, New Delhi, in both Ghazal singing and Tabla playing. Ustad Salim Allawale has had a deep passion for Ghazal singing since childhood. The Ghazals composed by him are based on classical ragas. He has performed ghazals at several prestigious national music festivals across the country. These include the Virasat Festival in Dehradun, the Alap Ghazal Festival and Bazme Ghazal in Hyderabad, and Santwani Festival at Bharat Bhavan, Bhopal. His other prominent performances include Jashne Urdu, organized by the Madhya Pradesh Urdu Academy, Begum of Pari Bazaar in Bhopal, Sinjara Festival in Jaipur, the All India Radio Sangeet Sammelan in Nazibabad, Uttar Pradesh, and the Lucknow Mahotsav. Ustad Salim Allawale has been honored with several prestigious awards, including the Madhya Pradesh Kala Gaurav Award, अभिनव कला सम्मान, संगीत शिरोमणि सम्मान, तालमणि सम्मान, चक्रधर सम्मान एंड प्राइड ऑफ भोपाल। ही रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ स्टाफ आर्टिस्ट एट आकाशवाणी भोपाल इन 2023। इन द सेम ईयर ही क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंडक्टिंग अ मास तबला परफॉर्मेंस इन्वॉल्विंग 1500 स्टूडेंट्स simultaneously.
0: और अब प्रस्तुत है उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का गजल गायन। इनके स्वर में पहले सुनते हैं कैफ भोपाली की ये रचना, कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा।
1: एंड नाउ प्रेजेंटिंग द गजल रिसाइटल बाय उस्ताद सलीम अल्लाह वाले, पेंड बाय कैफ भोपाली। कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा।

0: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले की आवाज़ में अब पेश है राजेश रेड्डी की लिखी ये गज़ल, ऐसे न बिछड़ आँखों से अशकों की तरह तो।
1: नाउ प्रेजेंटिंग अ गज़ल।

0: आज के इस गजल गायन की अंतिम प्रस्तुति में डॉक्टर बशीर बद्री की रचना परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता।
1: एंड नाउ फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ टुडेज गजल रिसाइटल वी ब्रिंग यू अ गजल रिटन बाय बशीर बद्र। परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता।

0: अरशद और सिंथेसाइजर पर शाहिद मासूम।
1: यू हैव जस्ट लिसन्ड टू अ गजल रिसाइटल बाय उस्ताद सलीम अल्लाह वाले। ही वाज अकंपनीड बाय ऑन तबला उस्ताद मोहम्मद नईम, ऑन वायलिन मनोज कुमार बमरेले, ऑन गिटार मोहम्मद अरशद, ऑन सिंथेसाइजर शाहिद मासूम।
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी भोपाल में की गई और इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया। इसी के साथ आज के क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के पहले भाग का समापन होता है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी भोपाल एंड ब्रॉडकास्ट बाय आकाशवाणी दिल्ली। विद दिस वी कंक्लूड The first part of today's national program of regional folk and light music.
2: लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजस्थान के मांड गायक और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार गोपाल सिंह खींची के गाए लोकगीत। गोपाल सिंह खींची ने गायन की शिक्षा मांड गायक चिरंजी लाल तंवर, शमसुद्दीन और बनारसी बाबू से प्राप्त की है। आपने कई विदेशी मंचों पर भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आप गायन के अलावा तबला और नगाड़ा वादन की भी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। आपने कई सम्मान भी प्राप्त किए हैं। आइए अब सुनते हैं उन्हीं के गाए लोकगीत।

0: लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजस्थान के मांड गायक गोपाल सिंह खींची के गाए लोकगीत। ये प्रस्तुति आकाशवाणी जयपुर की थी।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं मौसम। कोलकाता स्थित मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों और जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। ये था मौसम का हाल। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं पर समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर सन 2026। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:28 और 33 सेकंड हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।